0: एंगल भी लग रहा है।
1: आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स हम समझ सकते हैं सुनीता जी। हेमेंद्र जी, आप एक पुलिस असिस्टेंट

0: Well, here's some big breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. An important update coming in from Glasgow, where the Commonwealth Games are taking place as India makes history in javelin. Neeraj Chopra and Yashveer Singh win the silver and the bronze medal. That's right, Indians have won as many as two medals in javelin for India. We're learning an important update coming in as Neeraj Chopra wins the silver medal for India as Yashveer Singh wins the bronze medal. So India waking up to good news once again from Glasgow, as in the Commonwealth Games, India has made history when it comes to javelin. Neeraj Chopra has won, in fact, the silver medal, whereas Yashveer Singh has won the bronze medal for the country. Two important wins coming in. Let's also take you through the reactions coming in at this hour.
1: Silver medal hai, par abhi try karenge ki abhi next competitions mein dheere dheere aur badhaye.
2: Nee pressure to kya hai? Bas ye hai ki agar 100% fit ho to fir wo fighting spirit zyada rehti hai. Matlab ye lagta hai ki ab kuch bhi kar sakte hain. Aur agar matlab aap injury se aa rahe hain to thoda sa soch ke kadam rakhna padta hai. To aaj wahi tha ki thoda मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूं और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूं क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी और फिर भी थोड़ा ठीक था. मैं नहीं हूं फील्ड पे, अगर इंजरी भी है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ पीछे संभालने वाले हैं अभी और अच्छा थ्रो करने वाले हैं. तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी 85 प्लस में यशवीर आ गया है तो अभी हमारे 85 प्लस के काफ़ी अच्छे थ्रोर हो गए. रोहित ने 87 मीटर किया था अभी यहाँ आने से पहले, तो सचिन अच्छा कर रहा है. तो मतलब हमारे वो जूनियर थ्रोअर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारा जेवलिन इतना ग्रो कर रहा है.
3: ये मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में और मुझे ज़्यादा खुशी है. मेरे सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने और कंपटीशन बीच में नीरज भाई ने भी सपोर्ट किया है और अभी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़. अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं. तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहा था, फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, फिर लास्ट थ्रो अच्छी निकल गई उसमें.
0: For Neeraj Chopra, the Glasgow Games represent a full circle moment. The 28-year-old has often stated that his senior career effectively began at the Commonwealth Games, and returning to this stage after 8 long years, having missed the 2022 Birmingham Games due to a groin injury, was a significant milestone for him. Despite facing difficult conditions characterized by cold, wet weather and windy conditions, Chopra's trademark consistency allowed him to remain a top contender. Neeraj claimed silver with a season best throw of 85.83 meter, while Yash produced a stunning personal best of 85.41 on his final throw to clinch the bronze medal of the night. It gave India a remarkable double podium finish in men's javelin final. The coaches and the support staff also joined the celebrations with the athletes, making it a fitting end to a night that showcased India's growing strength in athletics' marquee events. We're tracking some more breaking news coming in from the Commonwealth Games. We're understanding that India has in fact won a double gold medal in judokas. Ashmita Dey has won the maiden judo gold in the Commonwealth Games, and Harsh Singh have also won a gold medal for India. Remember that both Ashmita Dey and Harsh Singh have made history for the country, as both of them have clinched historic golds for India. So there's some big breaking news coming in at this hour, as India has won a double gold medal in judo, as Ashmita Dey as well as Harsh Singh have both won a gold for India and have made history at the Commonwealth Games. Let's turn our attention to more updates coming in at this hour. Prime Minister Narendra Modi has released another video message on his Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. Saying that the entire country watched what happened, the Prime Minister described the language used as shocking, including abuses directed at his mother.
4: But instead of demanding punishment, the Prime Minister said that he wants to forgive what he called misled youth, adding that legal action is not the solution and that the society must help guide the young onto the right path. Let's also listen in to what the Prime Minister had to say.
5: Hi friends, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
4: Let's take you through more updates coming in at this hour. Now, former AAP councillor Tahir Hussain was sentenced to life imprisonment last evening for the murder of IB officer Ankit Sharma during the 2020 riots in Delhi. Now, in its verdict, the court said that the manner of the crime was of utmost brutality, with savagery that didn't just end with murder. However, the court still didn't find it as the rarest of rare case warranting a death penalty. Soon after, a war of words broke out between the BJP and the Aam Aadmi Party, with Delhi Minister Kapil Mishra demanding death penalty and even alleging that Tahir was in fact just a part of the conspiracy and that there were many other masterminds. Aam Aadmi Party meanwhile clarified that Tahir Hussain was sacked as soon as the case was registered and blamed Kapil Mishra for the 2020 Delhi riots incitement.
6: जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है।
7: देखिए, जैसे ही उन पर यह मुकदमा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। ये सवाल आप लोगों को बीजेपी से पूछना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा अपना दफ्तर उसी घर से चलाते थे जहां का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है। आपको ये सवाल बीजेपी से इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि कपिल मिश्रा ही उनको आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे, और आम आदमी पार्टी ने जब उनको ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद बीजेपी ने ही उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़वाया मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2025 में। तो ये सारे सवाल बीजेपी से आपको जरूर पूछने चाहिए। आम आदमी पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं कि कोई भी किसी के ऊपर भी अगर कोई केस हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन दे किसी भी तरह की।
8: डेफिनेटली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है, और हम सब लोग जो इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा में थे, हम सब ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब उम्र कैद की इस सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी साजिश की गई थी 2020 में, और अभी उसके न्याय होना शुरू हुआ है, अभी फैसले आने शुरू हुए हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड भी हैं, नेता भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखन जगत के लोग भी हैं जो इन साजिशों में शामिल थे। उसका एक हिस्सा ताहिर हुसैन था, लेकिन पूरा न्याय होना अभी बाकी है।
9: देखिए, कानून ने अपना काम किया और कानून के तहत आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन आज अंकित शर्मा की फैमिली को एक साई ऑफ रिलीफ तो मिला होगा कि 6 साल के बाद अंकित शर्मा के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी पीछे खड़े होते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या तमाम कांग्रेस के वो नेता हो जिन्होंने धर्म देखकर ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश करी, ताहिर हुसैन को बेचारा बनाने की कोशिश करी, उसको डिफेंड किया, आज उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है।
10: देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का नुकसान किया, अंकित शर्मा ने के परिवार ने अपने बेटे को खोया, आज उनके कष्ट में थोड़ी सी कमी हुई होगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने ताहिर हुसैन को प्रश्रय दिया अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे चलाने के लिए, उन लोगों के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। उन्हें आंख झुकाकर दिल्ली की और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।
4: Moving focus to more updates coming in Addis Ababa, well, exiled Bangladeshi writer Taslima Nasreen returned to Kolkata yesterday after an interval of 19 long years. She was forced to flee Kolkata in 2007 after violent protests erupted against her memoir, which was banned by the then CPIM-led Bengal government for allegedly hurting religious sentiments. The author is said to attend a program protesting fundamentalism at the Rabindra Sadan, where West Bengal Chief Minister Shuvendu Adhikari is expected to be in attendance. Upon arriving in Kolkata, Nasreen said that her return was like a personal homecoming. She added that she was forced to leave West Bengal, but has never stopped hoping that she would return one day.
11: I came back to Kolkata. West Bengal is part of Bengal. So I couldn't go back to my country, Bangladesh, but I came back to Kolkata. I used to call it my second home. So I feel like I came back to my country, to my home actually. I want to visit College Street, I want to go to Coffee House and the other old places that I used to go. I really like to go to those places.
4: Well, that was slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: Well, recent big breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. An important update coming in from Glasgow, where the Commonwealth Games are taking place as India makes history in javelin. Neeraj Chopra and Yashvir Singh win the silver and the bronze medal. That's right, Indians have won as many as 2 medals in javelin for India. We're learning an important update coming in as Neeraj Chopra wins the silver medal for India as Yashvir Singh wins the bronze medal. So India waking up to good news once again from Glasgow, as in the Commonwealth Games, India has made history when it comes to javelin. Neeraj Chopra has won, in fact, the silver medal, whereas Yashvir Singh has won the bronze medal for the country. 2 important wins coming in. Let's also take you through the reactions coming in at this hour.
1: Silver medal hai, aur ab try karenge ki abhi next competitions mein dheere dheere aur badhaye.
2: Nahi, pressure to kya hai, bas ye hai ki agar 100% fit ho to fir wo fighting spirit zyada rehti hai, matlab ye lagta hai ki ab kuch bhi kar sakte hain. Aur agar matlab aap injury se aa rahe hain to thoda sa soch ke kadam rakhna padta hai, to aaj wahi tha ki thoda मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूं और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूं, क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी, और फिर भी थोड़ा ठीक था. मैं नहीं हूं फील्ड पे, अगर इंजरी भी है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ पीछे संभालने वाले हैं अभी और अच्छा थ्रो करने वाले हैं, तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी 85+ में यशवीर आ गया है, तो अभी हमारे 85+ के काफ़ी अच्छे थ्रोर हो गए. रोहित ने 87 मीटर किया था अभी यहाँ आने से पहले, तो सचिन अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब हमारे वो जूनियर थ्रोअर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारा जेवलिन इतना ग्रो कर रहा है.
3: ये मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में, और मुझे ज़्यादा खुशी है. मेरे सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने, और कंपटीशन बीच में नीरज भाई ने भी सपोर्ट किया है, और अभी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़. अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था, भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं, तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहा था. फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, लास्ट थ्रो अच्छी निकल गई थी उसमें.
0: For Neeraj Chopra, the Glasgow Games represent a full circle moment. The 28-year-old has often stated that his senior career effectively began at the Commonwealth Games, and returning to this stage after 8 long years, having missed the 2022 Birmingham Games due to a groin injury, was a significant milestone for him. Despite facing difficult conditions characterized by cold, wet weather and windy conditions, Chopra's trademark consistency allowed him to remain a top contender. Neeraj claimed silver with a season best throw of 85.

0: one of athletes, one of athletics' marquee events.
1: We're tracking some more breaking news coming in from the Commonwealth Games. We're understanding that India has in fact won a double gold medal in judokas. Ashmita Dey has won the maiden judo gold in the Commonwealth Games, and Harsh Singh have also won a gold medal for India. Remember that both Ashmita Dey and Harsh Singh have made history for the country, as both of them have clinched historic goals for India. So there's some big breaking news coming in at this hour, as India has won a double gold medal in judo, as Ashmita Dey as well as Harsh Singh have both won a gold for India and have made history at the Commonwealth Games. Let's turn our attention to more updates coming in at this hour. Prime Minister Narendra Modi has released another video message on his Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. Saying that the entire country watched what happened, the Prime Minister described the language used as shocking, including abuses directed at his mother. But instead of demanding punishment, the Prime Minister said that he wants to forgive what he called misled youth, adding that legal action is not the solution and that the society must help guide the young onto the right path. Let's also listen in to what the Prime Minister had to say.
2: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar Mantar par jo kuch bhi hua, desh aur duniya ne dekha hai. Kuch shararti bachchon ne baddi baddi galiyan boli. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं. लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं. उन्हें राह दिखाना हमारा काम है. गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है. और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है. मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं. आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो.
1: Let's take you through more updates coming in at this hour. Now, former AAP councillor Tahir Hussain was sentenced to life imprisonment last evening for the murder of IB officer Ankit Sharma during the 2020 riots in Delhi. Now, in its verdict, the court said that the manner of the crime was of utmost brutality, with savagery that didn't just end with murder. However, the court still didn't find it as the rarest of rare case warranting a death penalty. Soon after, a war of words broke out between the BJP and the Aam Aadmi Party, where Delhi Minister Kapil Mishra demanded

0: demanding death penalty and even alleging that Tahir was in fact just a part of the conspiracy and that there were many other masterminds. Aam Aadmi Party meanwhile clarified that Tahir Hussain was sacked as soon as the case was registered and blamed Kapil Mishra for the 2020 Delhi riots incitement.
1: जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है।
2: देखिए, जैसे ही उन पर यह मुकदमा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। ये सवाल आप लोगों को बीजेपी से पूछना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा अपना दफ्तर उसी घर से चलाते थे जहां का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है। आपको ये सवाल बीजेपी से इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि कपिल मिश्रा ही उनको आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे, और आम आदमी पार्टी ने जब उनको ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद बीजेपी ने ही उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़वाया मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2025 में। तो ये सारे सवाल बीजेपी से आपको जरूर पूछने चाहिए। आम आदमी पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं कि कोई भी किसी के ऊपर भी अगर कोई केस हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन दे किसी भी तरह की।
3: डेफिनेटली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है, और हम सब लोग जो इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा में थे, हम सब ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब उम्र कैद की इस सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी साजिश की गई थी 2020 में, और अभी उसके न्याय होना शुरू हुआ है, अभी फैसले आने शुरू हुए हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड भी हैं, नेता भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखन जगत के लोग भी हैं जो इन साजिशों में शामिल थे। उसका एक हिस्सा ताहिर हुसैन था, लेकिन पूरा न्याय होना अभी बाकी है।
4: देखिए, कानून ने अपना काम किया और कानून के तहत आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन आज अंकित शर्मा की फैमिली को एक साई ऑफ रिलीफ तो मिला होगा कि 6 साल के बाद अंकित शर्मा के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी पीछे खड़े होते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या तमाम कांग्रेस के वो नेता हो जिन्होंने धर्म देखकर ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश करी, ताहिर हुसैन को बेचारा बनाने की कोशिश करी, उसको डिफेंड किया, आज उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है।
5: देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का नुकसान किया, अंकित शर्मा ने के परिवार ने अपने बेटे को खोया, आज उनके कष्ट में थोड़ी सी कमी हुई होगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने ताहिर हुसैन को प्रश्रय दिया अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे चलाने के लिए, उन लोगों के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। उन्हें आंख झुकाकर दिल्ली की और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।
0: Moving focus to more updates coming in at this hour. Well, exiled Bangladeshi writer Taslima Nasreen returned to Kolkata yesterday after an interval of 19 long years. She was forced to flee Kolkata in 2007 after violent protests erupted against her memoir, which was banned by the then CPIM-led Bengal government for allegedly hurting religious sentiments. The author is said to attend a program protesting fundamentalism at the Rabindra Sadan, where West Bengal Chief Minister Shuvendu Adhikari is expected to be in attendance. Upon arriving in Kolkata, Nasreen said that her return was like a personal homecoming. She added that she was forced to leave West Bengal, but has never stopped hoping that she would return one day.
6: I came back to Kolkata. West Bengal is part of Bengal. So I couldn't go back to

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
3: Really?
2: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
4: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं इज इट फायर
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हिट तो है इसकी खास बात
7: वाओ मामा क्या स्वाद है
6: अरे मेरे राजा
8: Launch control, 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: Welcome back. My name is Reeth and you're watching NDTV. Well, India's judo cast has scripted history with a sensational double gold, marking one of the country's biggest achievements in the sport. NDTV has spoken exclusively to the gold medalists, Asmita, Harsh and Yamini, about the journey behind the triumph, the sacrifices that made it possible and what these medals mean for Indian judo. From overcoming tough weight management to dedicating the victory to a late father. Here's our exclusive conversation with the history makers. Listen in.
5: Thank you very much, Golden Girl, Golden Boy, and Yamini for joining me on this special interview on NDTV. Asmita, to you first. Your first reaction on having the first judo Commonwealth gold for India?
6: I'm very happy, ma'am. This gold medal for me, everything.
5: आपको ये उम्मीद था कि आप जब गए हुए थे ग्लासगो कि गोल्ड मेडल लेके ही वापस आएंगे?
6: हाँ मैम, मुझे आशा तो था और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के जाऊंगी।
5: ओके हर्ष, आपको पूछना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपका जूडो में और कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया?
7: शुरुआत मैम स्कूल से ही हुई थी। स्कूल में मैं भला एक घंटा ऐसे स्पोर्ट्स के लिए जूडो खेलता था।
5: वन सेकंड। हर्ष का फ्रेम आ रहा है क्या? मुझे ना पूरा दिखाई नहीं दे रहा है।
8: आ रहा है।
5: ओके ओके राइट, यू कैन कंटिन्यू हर्ष।
7: तो स्कूल में मैंने स्टार्ट करी थी जूडो, जब मैं 7-8 साल का था। ऐसी मतलब एंजॉयमेंट के लिए करी थी स्टार्ट, इसके बाद धीरे धीरे अभी प्रोफेशनली स्टार्ट हो गई कर रही है।
5: ओके, आप दिल्ली में स्कूल में पढ़ते थे?
7: हाँ जी हाँ जी, दिल्ली में।
5: ओके, और स्कूल के कोच ने आपको शुरुआत कराया जूडो?
7: हाँ जी हाँ जी, वो हमारे पीटी कोच थे, क्या कहते हैं, सत्यवान सर जी, ने वही मेरे को गेम में लेकर आए।
5: यामिनी, आपको मैं पूछूंगी आज के मैच के बारे में, जो इंग्लिश ओपोनेंट थे आपके वो काफी डिफिकल्ट थे, मैच था और लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करते रहे, अगर पेनल्टी ना मिलता तो शायद कुछ और होता। मैच के बारे में बताइए कि कैसे मोमेंटम स्विंग किया?
8: जब स्टार्टिंग हुई थी तभी से मेरा था कि हाँ मैं जीत सकती हूँ फाइट। जब मैंने उसके साथ फाइट किया मुझे लगा कि हाँ ये इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं जीत सकती हूँ। मैं पूरे टाइम खुद से बात कर रही थी, हाँ मैं जीत सकती हूँ, स्ट्रांग। पूरे एंड तक मैंने कोशिश किया, एंड तक मैं और ज्यादा अग्रेसिव करने लगी, शायद वही ज्यादा
9: अग्रेसिव।
4: On that note, we're slipping into a short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: और
2: बच्चे हैं?
3: तीन साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
5: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing.

0: न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: Well, that was the Prime Minister's video. We also have a reaction coming in from the Congress. Let's take you through it. We have some big breaking news coming in at this hour as P. Chidambaram, the former Union Minister, has now questioned the Prime Minister on BJP trolls. Chidambaram has said in High Court that are BJP trolls also forgiven? P. Chidambaram has now questioned BJP over abusive ex-post, saying, and I quote, that has the Honourable Prime Minister also forgiven the BJP trolls who react on X with abusive and filthy comments on posts critical of the government? So an important question raised by, of course, the senior Congress leader and former Union Minister P. Chidambaram, who has questioned the Prime Minister on BJP trolls who react to posts critical of the government with abusive comments. Let's now take you through more breaking news coming in at this hour. Well, the Prime Minister Narendra Modi will visit Andhra Pradesh and Karnataka later today to inaugurate key infrastructure and cultural projects. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, built at a cost of over ₹5,640 crores. Prime Minister is also going to lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Visakhapatnam, which, remember, is Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility approved under the India Semiconductor Mission. After concluding his Andhra Pradesh visit, the Prime Minister will then travel to Mysuru in Karnataka to inaugurate Swami Vivekananda Cultural Youth Centre. He will also address the public gathering there. The Vivekananda Smaraka commemorates Swami Vivekananda's historic visit to Mysuru in November 1892 during his journey all across India. Let's shift tracks and take you through more developments taking shape at this hour. Amid Rahul Gandhi's criticism of the government's crackdown on protesters for posting abusive content, the Karnataka Congress legal cell has now registered a complaint against three Instagram handles in Bengaluru for posting abusive and defamatory videos against Rahul Gandhi. Now, in their complaint, the KPCC has now flagged defamatory content against Rahul Gandhi in these Instagram videos, which contained obscene and sexually explicit language, according to them. They also raised concerns about the abusive comments posted by various users under the video with the tagline, "Why is the opposition silent?" An FIR has also been registered by the Bengaluru

0: Cybercrime Police, invoking Section 67 of the IT Act for sharing obscene material and BNS Section 352 for intentional insult. Police are now investigating to identify the account holders named in the complaint. Well, the Kaveri water dispute is once again spilling beyond the river basins and into the political arena. A fresh order directing Karnataka to release water to Tamil Nadu has triggered protests all across Karnataka. Chief Minister Vijay's film, Janayagan, has also been caught in the crossfire, with posters torn and shows even disrupted. In the wake of angry protests, the Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar has urged Tamil Nadu Chief Minister Vijay to defer his Bengaluru visit. Meanwhile, the DMK has also launched a sharp attack on the TVK government in Tamil Nadu, accusing it of mishandling the crisis and betraying the state's interests. Congress, on the other hand, is caught in a political bind, as it is remembered in power in Karnataka, but also in power, also a part of the government that is currently present in Tamil Nadu.
1: It is the duty of the central government, the BJP government over here, to intervene in this issue and make sure Tamil Nadu gets its share of water. Our Chief Minister, Mr. Joseph Vijay, is planning to meet the Karnataka Chief Minister in a few days in Bangalore. And I hope he succeeds in persuading the Karnataka Chief Minister, Karnataka government, to release the due share of water which Tamil Nadu is demanding.
2: We will, the order, the stand of Karnataka government is that I have to take my opposition party leaders into confidence. I have to seek the legal advice. Then I will take a call after discussing with them. So last 100 years, I would like to tell you, this is the lowest which has been left out to Tamil Nadu. But we will request all of them. Let us all work together.
3: When you talk about Kaveri River Basin, Chief Minister clearly said he warned farmers not to grow crops here because of the drought. At the same time, in the month of June, Karnataka government decides to release 3.5 TMC of water to Tamil Nadu. So my primary question, or the people of the farmers are questioning the Chief Minister, when there is a severe drought, when we don't have water even for drinking purpose, why did they allow 3.5 TMC water to Tamil Nadu?
4: The government of Tamil Nadu is the most opaque government that we have seen. I understand you can do it on smaller issues, but an issue like Meghadadu or an issue of Kaveri is a very, very serious matter. I think you should appreciate D.K. Shivakumar for protecting the interest of Karnataka. But whereas here the Chief Minister of Tamil Nadu has let down the people and the farmers of Tamil Nadu by these kind of gimmicks and image management. This issue is concerned. It has to be sorted out through the court alone. No interstate water dispute can be managed by two chief ministers getting onto a talk. That is so unfortunate.
5: We are very clear. There is a Kaveri Management Board, and whatever the Kaveri Management Board decides has to be implemented. That is our position. We are very clear in Tamil Nadu that the arrangement, agreement, verdict of the Kaveri Management Board must be implemented in toto.
0: Let's take you through some more updates coming in at this hour. Now, former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain, who has been sentenced to life imprisonment last evening for the murder of IB officer Ankit Sharma during the Delhi riots in February 2020. Now, in its verdict, the court said that the manner of the crime was of utmost brutality, with savagery that did not just end with the murder. However, the court still did not find it as the rarest of rare case, warranting a death penalty. Soon after, a war of words broke out between the Aam Aadmi Party and the BJP, with Delhi Minister Kapil Mishra demanding a death penalty and even alleging that Tahir was just one, was a part of the conspiracy, and that there were many other masterminds in the case. The Aam Aadmi Party has meanwhile clarified that Tahir Hussain was sacked as soon as the case was registered and even blamed Kapil Mishra for the 2020 Delhi riots incitement. Let's take you through the reactions coming in at this hour.
6: Sir, please. डेफिनेटली ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है और हम सब लोग जो इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा में थे, हम सब ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब उम्र कैद की इस सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी साजिश की गई थी 2020 में और अभी उसके न्याय होना शुरू हुआ है, अभी फैसले आने शुरू हुए हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड भी हैं, नेता भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखन जगत के लोग भी हैं जो इन साजिशों में शामिल थे, उसका एक हिस्सा ताहिर हुसैन था, लेकिन पूरा न्याय होना अभी बाकी है।
7: जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है।
8: देखिए, जैसे ही उन पर ये मुकदमा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। ये सवाल आप लोगों को बीजेपी से पूछना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा अपना दफ्तर उसी घर से चलाते थे जहां का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है। आपको ये सवाल बीजेपी से इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि कपिल मिश्रा ही उनको आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे और आम आदमी पार्टी ने जब उनको ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद बीजेपी ने ही उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़वाया मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2025 में। तो ये सारे सवाल बीजेपी से आपको जरूर पूछने चाहिए। आम आदमी पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं कि कोई भी किसी के ऊपर भी अगर कोई केस हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन दे किसी भी तरह की।
9: कानून ने अपना काम किया और कानून के तहत आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन आज अंकित शर्मा की फैमिली को एक साई ऑफ रिलीफ तो मिला होगा कि 6 साल के बाद अंकित शर्मा के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी पीछे खड़े होते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या तमाम कांग्रेस के वो नेता हो जिन्होंने धर्म देखकर ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश करी, ताहिर हुसैन को बेचारा बनाने की कोशिश करी, उसको डिफेंड किया, आज उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है।
10: देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का नुकसान किया, अंकित शर्मा ने के परिवार ने अपने बेटे को खोया, आज उनके कष्ट में थोड़ी सी कमी हुई होगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने ताहिर हुसैन को प्रश्रय दिया अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे चलाने के लिए, उन लोगों के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। उन्हें आँख झुकाकर दिल्ली की और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
11: देखिए, ताहिर जो है एक जनप्रतिनिधि था, काउंसलर था इलाके का, और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो वहाँ का काम रहा है, उसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा आदमी था, उसको रेस्क्यू पुलिस ने किया, और जिस वक्त रेस्क्यू किया उस वक्त उसकी छत पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अगले दिन जो खबरें चली, रात का उसका फोटो, एक हाथ में उसका डंडा और प्लेन छत बिल्कुल उसकी, लेकिन अगले दिन जो खबरें चली, वो उसके छत पे पेट्रोल बम और पत्थर और पता नहीं क्या क्या, एक गुलेल, पता नहीं क्या क्या था उसकी छत पे, और उसी को लेकर जो है वो ताहिर हुसैन को फिर पकड़ लिया गया। और पकड़कर, हालांकि मैं जहां तक उसको जानता हूं, उसकी पार्टी अगर उसका साथ दे देती उस वक्त में, तो शायद उसके साथ ये मामला ना होता। केजरीवाल ने उसको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया।
12: लोगों से सुना और वो है, जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनको क्लीन चिट मिली है। ताहिर का नाम कपिल होता तो शायद उसको भी मिल जाती।
13: ये बहुत अफसोस की बात है। हमने ताहिर हुसैन की वो तस्वीर भी देखी जब वो छत पे किस तरीके से पुलिस वालों को कॉल के मदद की गुहार कर लगा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं जो विक्टिम थे इस दंगों के उनको गुनहगार बना दिया गया, और जो असली कातिल हैं अंकित शर्मा के और असली गुनहगार है वो आज भी खुले घूम रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में खुले घूम रहे हैं।
0: Well, Gujarat continues to reel under the impact of the torrential rain, with several districts reporting severe waterlogging and flood-like conditions. The heavy downpour has disrupted normal life across the state. Let's take you through some of the defining visuals coming in from the state. Relentless rainfall has left several parts of Navsari submerged, with roads turning into streams. Traffic has been hit as vehicles struggle to move through the waterlogged stretches. The administration remains on alert with more rain forecast for the region. Heavy showers have triggered widespread waterlogging across Bharuch, affecting normal life. Low-lying areas remain inundated as continuous rainfall overwhelms drainage systems. Heavy rainfall and severe waterlogging have hit Surat, Gujarat, leading to widespread flooding in low-lying areas, the suspension of multiple municipal bus routes, and a red alert warning from the Indian Meteorological Department. Heavy flooding has also forced wildlife into residential areas, with a crocodile entering a house in Somnath. Locals, remember, alerted the Forest Department after spotting the reptile inside the residence. Rescue teams safely captured the crocodile and released it back to its natural habitat. Like we've been discussing, Gujarat is once again battling a fresh spell of monsoon fury. Incessant rainfall has triggered flood-like conditions across several districts, with roads submerged, rivers swelling, and normal life thrown out of care. The IMD has issued a red alert for districts including Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Bhotar, and Surendranagar, warning of extremely heavy rainfall. Rescue teams remain on standby as authorities evacuate residents from vulnerable areas and urge people to stay indoors. Meanwhile, my colleague Akhil Jameel has filed a ground report from Surat. Let's take a look.
14: The monsoon season is at its peak. Right now, we have been witnessing that several estates have been flooded with the rainwater. And if you see, in Gujarat, what we have been witnessing that out of 34 districts, if you see, more than 20 districts are affected right now. And if you see, right now, we have arrived in Surat district. This is one of the most affected districts in southern Gujarat. Behind me, you can see the visual over here. This is a water body, water canal body, and where you can see the drainage system is still working, and you can see the flow of water at this stage. What we have been witnessing that this water canal body meets into Tapti River, and from there it goes towards the Arabian Sea. So not only this water canal body, what we have been witnessing across the very city, that at every single choke point there are a lot of drainage system which has been choked. But right now the district administration team is putting their best foot forward in order to rectify the situation. And on ground zero, what we have been witnessing that two SDRF team have been put in place, one NDRF team, one unit of the Indian Army has also put in place. But at this stage, if you see, red alert has been issued by the IMD across 13 districts in Gujarat, and seven other districts what we have seen that orange alert has been issued. If you talk about Navsari, if you talk about Valsar, if you talk about the Dang district, so what we have been witnessing that the situation and the flooded situation is still remain pretty bad, and heavy torrential rain can be seen.
0: Well, recent breaking news coming in at the Sabo. Well, the President of India has reacted on India's remarkable run in judo. Now, she's gone on to say that India's remarkable run in judo continues, and she's even extended her congratulations to Yamini Maurya for clinching the silver medal in the women's 57 kg judo event in Glasgow. She's even gone on to say that your podium finish has earned India its third judo medal at Glasgow Commonwealth. An important statement coming in as the President of India, Draupadi Murmu, has now reacted to India's wins at Glasgow. She's gone on to congratulate Yamini Maurya for clinching the silver medal in the women's 57 kg judo event at Glasgow Commonwealth Games 2026. Now the president has said, and I quote, that your resilience, determination and fighting spirit have made the nation proud. An important update coming in as the Prime Minister too has congratulated the winners, saying that an outstanding silver for Neeraj Chopra in the men's javelin event at Glasgow. The Prime Minister has further gone on to congratulate Chopra by saying that he has once again demonstrated remarkable consistency, composure and spirit. He's even said that Neeraj Chopra's successes have made every Indian proud and has even wished him well for his endeavours ahead. So the Prime Minister as well as the President reacting to the big wins at Glasgow in the Commonwealth Games 2026. We're seeing important reactions coming in as remember India is now winning big at the tournament. Well, India's judokas have scripted history with a sensational double gold, marking one of the country's biggest achievements in the sport. NDTV has spoken exclusively to the gold medalists, Ashmita, Harsh and Yamini, about their journey behind the triumph, the sacrifices that made it possible and what these medals mean for Indian judo. From overcoming tough weight management to dedicating the victory to a late father. Here's an exclusive conversation with the history makers. Listen in.
15: Thank you very much, Golden Girl, Golden Boy, and Yamini for joining me on this special interview on NDTV. Ashmita, to you first. Your first reaction on having the first judo Commonwealth gold for India.
16: I'm very happy, ma'am. This gold medal for me, everything.
15: Aapko ye उम्मीद था कि आप जब गए हुए थे ग्लासगो की गोल्ड मेडल लेके ही वापस आएंगे?
16: हाँ मैम, मुझे आशा तो था और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के जाऊंगी.
15: ओके हर्ष, आपको पूछना चाहती हूँ. मैं दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं. आप बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपका जूडो में और कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया?
17: स्कूल में मैंने स्टार्ट करी थी जूडो जब मैं 7-8 साल का था. ऐसी मतलब एंजॉयमेंट के लिए करी थी स्टार्ट. इसके बाद धीरे धीरे अभी प्रोफेशनली स्टार्ट हो गई कर रही है.
15: ओके, आप दिल्ली में स्कूल में पढ़ते थे?
17: हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में.
15: ओके, और स्कूल के कोच ने आपको शुरुआत कराया जूडो?
17: हाँ जी, हाँ जी, हमारे पीटी कोच थे क्या कहते हैं सत्यवान सर जी, वही मेरे को गेम में लेकर आए.
15: यामिनी, आपको मैं पूछूंगी आज के मैच के बारे में. जो इंग्लिश ओपोनेंट थे आपके, वो काफी डिफिकल्ट थे मैच था और लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करते रहे. अगर पेनल्टी ना मिलता तो शायद कुछ और होता. मैच के बारे में बताइए कि कैसे मोमेंटम स्विंग किया.
18: जब स्टार्टिंग हुई थी तभी से मेरा था कि हाँ मैं जीत सकती हूँ फाइट. जब मैंने उसके साथ फाइट किया मुझे लगा कि हाँ ये इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं जीत सकती हूँ. मैं पूरे टाइम खुद से बात कर रही थी, हाँ मैं जीत सकती हूँ, जीत सकती हूँ, स्ट्रांग. पूरे एंड तक मैंने कोशिश किया. एंड तक मैं और ज्यादा अग्रेसिव करने लगी.
15: अस्मिता, मैं आपको पूछूंगी ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स टीम का जो कैंपेन रहा है अभी तक, आप दो गोल्ड मेडल जीते हो, एक सिल्वर मेडल जीते हो, इस कैंपेन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
18: हिस्ट्री फॉर इंडिया
15: बिल्कुल हिस्ट्री फॉर इंडिया है. लेकिन ये हिस्ट्री हिस्टोरिक मोमेंट तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने काफी टाइम दिया, काफी वक्त दिया और ऐसा नहीं कि पहले टूर्नामेंट में जाके आप आपका काफी सारा एक्सपोजर ट्रिप रहा, काफी सारे कॉम्पिटिशन रहे, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा प्रोसेस कैसा था टू द पोडियम.
18: सब लोगों ने गेम भी लगाए थे और खेले ऑपरेशन के लिए. कुछ हम खुद से भी गए हैं, कुछ हमें गवर्नमेंट ने भेजे हैं. तो सिर्फ कॉमनवेल्थ मेडल लाने के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है हमारे लिए और इंडिया के लिए। तो और हमने बहुत डाइटिंग करी है, बहुत वेट मैनेजमेंट किया है, कुछ नहीं खा रहे हैं, ना ज्यादा तीखा खा रहे हैं, ना मीठा खा रहे हैं, इतने महीनों से कुछ सब छोड़ रखा है। ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, एवरी डे सेम टाइम सेम चीज करना रोज रोज, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है पर अच्छा भी है महिला।
0: Well, that's all for now on The Breakfast Show. On that note, slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
3: सबको

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक.
3: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज. आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा.
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे.
3: आपकी फैमिली है?
4: कौन?
3: बच्चे हैं?
4: 3 साल.
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत.
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: तक अलाउड.
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है.
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो.
5: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
8: अरे मेरे राजा.
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: POK ke firing range mein khade hain.
3: Just few inches away is POK.
10: Ho sakta hai dushman ko pata ho ki Saif Ali Khan yahan par khade hain. Is it fire?
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
11: This location from Tel Aviv
1: brought clarity right now, right to complex right issues.
12: Welcome back. My name is Reeth, and you're watching IDTV. Well, India delivered a blockbuster day at the Commonwealth Games, lighting up Glasgow with medals across disciplines. The biggest headline came from the judo arena, where Asmita Dey scripted history with India's maiden Commonwealth Games judo gold, as Harsh joined her to complete a sensational double gold. In athletics, Neeraj Chopra returned with the season's best to claim silver, while Yashvir Singh produced a personal best to grab a bronze in a memorable double podium for India in the men's javelin. Tejaswin Shankar also added another milestone with India's first ever Commonwealth Games decathlon medal, and the all 10 Indian boxers stormed into the finals, guaranteeing a rich medal haul. India now sits on 23 medals, 5 gold, 12 silver and 6 bronze, capping a day to remember for the Indian sport.
13: सिल्वर मेडल है, पर अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स में धीरे धीरे और बढ़ाएं.
14: नी प्रेशर तो क्या है, बस ये है कि अगर 100% फिट हो तो फिर वो फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा रहती है. मतलब ये लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच सोच के कदम रखना पड़ता है. तो आज वही था कि थोड़ा मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूँ, और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूँ क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से. वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी, और फिर भी थोड़ा ठीक था.
15: मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में, और मुझे ज़्यादा खुशी है. मेरे सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने, और कंपटीशन बीच में नीरज भाई ने भी सपोर्ट किया है. और अभी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़. अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था, भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है. तो फिर मन में ये चल रहा था, भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं.
4: तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहता, फिर लास्ट रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, लास्ट रो अच्छी निकली थी उसमें।
8: और नीरज चोपड़ा, द ग्लासगो गेम्स रिप्रेजेंट अ फुल सर्कल मोमेंट। द 28-year-old हैज ऑफन स्टेटेड दैट हिज सीनियर करियर इफेक्टिवली बिगन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड रिटर्निंग टू दिस स्टेज आफ्टर 8 लॉन्ग इयर्स having missed the 2022 Birmingham Games due to a groin injury was a significant milestone for him. Despite facing difficult conditions characterized by cold, wet weather and windy conditions, Chopra's trademark consistency allowed him to remain a top contender. Neeraj claimed silver with a season best throw of 85.83 meters, while Yash produced a stunning personal best of 85.41 on his final throw to clinch the bronze medal of the night. It gave India a remarkable double podium finish in men's javelin final. The coaches and the support staff also joined the celebrations with the athletes, making it a fitting end to a night that showcased India's growing strength in one of athletics marquee events.
12: Well, history made, barriers broken. NDTV caught up exclusively with India's golden judokas Ashmita, Harsh and Yamini as they reflected on the effort and emotion and even determination behind their landmark triumphs. Here's the exclusive conversation. Listen in.
8: Thank you very much, Golden Girl, Golden Boy, and Yamini for joining me on this special interview on NDTV. Ashmita, to you first. Your first reaction on having the first judo Commonwealth gold for India?
16: I'm very happy, ma'am. This gold medal for me, everything.
8: आपको ये उम्मीद था कि आप जब गए हुए थे ग्लासगो की गोल्ड मेडल लेके ही वापस आएंगे?
16: हाँ मैम, मुझे आशा तो था और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के जाऊंगी।
8: ओके हर्ष, आपको पूछना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपका जूडो में और कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया?
17: स्कूल में मैंने स्टार्ट करी थी जूडो जब मैं 7-8 साल का था, ऐसी मतलब एंजॉयमेंट के लिए करी थी स्टार्ट, इसके बाद धीरे धीरे अभी प्रोफेशनली स्टार्ट हो गई कर रही है।
8: ओके, आप दिल्ली में स्कूल में पढ़ते थे?
17: हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में।
8: ओके, और स्कूल के कोच ने आपको शुरुआत कराया जूडो?
17: हाँ जी, हाँ जी, हमारे पीटी कोच थे, क्या कहते हैं, सत्यवान सर जी, वही मेरे को गेम में लेकर आए।
8: यामिनी, आपको मैं पूछूंगी आज के मैच के बारे में, जो इंग्लिश ओपोनेंट थे आपके वो काफी डिफिकल्ट थे, मैच और लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करते रहे, अगर पेनल्टी ना मिलता तो शायद कुछ और होता, मैच के बारे में बताइए कि कैसे मोमेंटम स्विंग किया?
18: जब स्टार्टिंग हुई थी तभी से मेरा था कि हाँ मैं जीत सकती हूँ फाइट, जब मैंने उसके साथ फाइट किया मुझे लगा कि हाँ ये इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं जीत सकती हूँ, मैं पूरे टाइम खुद से बात कर रही थी हाँ मैं जीत सकती हूँ स्ट्रांग, पूरे एंड तक मैंने कोशिश किया, एंड तक मैं और ज्यादा अग्रेसिव करने लगी,
8: अस्मिता मैं आपको पूछूंगी, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स टीम का जो कैंपेन रहा है अभी तक, आप दो गोल्ड मेडल जीते हो, एक सिल्वर मेडल जीते हो, इस कैंपेन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
16: हिस्ट्री फॉर इंडिया
8: बिल्कुल हिस्ट्री फॉर इंडिया है, लेकिन ये हिस्ट्री हिस्टोरिक मोमेंट तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने काफी टाइम दिया, काफी वक्त दिया, और ऐसा नहीं कि पहले टूर्नामेंट में जाके आप आपका काफी सारा एक्सपोजर ट्रिप रहा, काफी सारे कॉम्पिटिशन रहे, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा प्रोसेस कैसा था टू द पोडियम? और बताओ इफ यू कैन टॉक.
18: सब लोगों ने कंपेयर के पहले गेम भी लगाए थे और खेले ऑपरेशन के लिए, कुछ हम खुद से भी गए हैं, कुछ हमें गवर्नमेंट ने भेजे हैं. तो सिर्फ कॉमनवेल्थ मेडल लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है हमारे लिए और इंडिया के लिए. तो और हमने बहुत डाइटिंग करी है, बहुत वेट मैनेजमेंट किया है, कुछ नहीं खा रहे हैं, ना ज्यादा तीखा खा रहे हैं, ना मीठा खा रहे हैं, इतने महीनों से कुछ सब छोड़ रखा है. ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, एवरी डे सेम टाइम सेम चीज करना रोज रोज, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है पर अच्छा भी है एकदम महिला.
12: From a modest training hall in Delhi's Dwarka Moor to the top of the Commonwealth Games podium, Harsh Singh's journey is one of grit, sacrifice and unwavering belief. NDTV in fact even visited his home where the celebrations are in full swing, spoke to his family and the mentor who stood by him every step of the way. Listen in to this conversation.
19: मैं शुरू से मैच जो ना 3-54 से शुरू हुआ था हर्ष का मैच, मैं उसी टाइम से बैठा हुआ था. तो नर्वस तो था ही शुरू में कि कहीं कुछ अच्छा ना हुआ, तो फिर जो ना मैंने किसी को बताया तक नहीं था और उसको अपने नीचे तक नहीं बताया था. मैं मैच देखता रहा, पहली फाइट जो ना उसने निकाल ली, फिर और खुशी हुई, मैं कह चलो ठीक है. अब दूसरी फाइट निकाली जब और खुशी हुई, तीसरी फाइट जब निकाली जब जाके हमने सबको थोड़ा बताना शुरू किया कि मैं क्या बेटा जो ना खेल रहा, आप जो ना देखो. मैं कह ना
20: एक पिता के तौर पे कैसे देख रहे हैं इसे, उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया है. अब
19: मेडल जो निकला है तो देश के लिए जो मेडल लाए हैं उससे जो ना हम हमारी खुशी जो ना दोगुनी हो गई. मैं तो उछल पड़ा था, टीवी के आगे बैठा हुआ था, उछल पड़ा. मैं कहा चलो देश के लिए हमारे बेटे ने कुछ किया.
21: मुझे बहुत खुशी है मेरा बेटा देश के लिए मेडल लेके आया है, बहुत ज्यादा खुशी है.
20: आपने जब देखा वो पल तब भावुक हो गए थे आप, खुश थे, कैसा थोड़ा बताइए उसका.
21: बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे,
19: सबके
21: मतलब कॉल आने लगे थे मेरे पास बहुत ज्यादा, और सब खुश हैं मेरे परिवार में, रिश्तेदार वगैरह सब खुश हैं.
20: हम सबने देखा कि हर्ष ने जो गोल्ड मेडल जीता वो आपको समर्पित किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये उनकी बात सुनके?
21: बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी है मुझे.
19: हर्ष से जब बात हुई,
21: उसने जब पहले गोल्ड लेके आया था वो गोवा से, मतलब गोल्ड मेडल लेके आया था, तो उसने मेरे से आके पूछा था कि मम्मी आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूँ आपको. मैंने बोला बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है तुम्हारा मेडल.
22: मैं जूडो में आया तो ये 8 साल का होगा लगभग, तो फ्लेक्सिबल बहुत था, जुझारू भी था, थोड़ा शरारती भी था जो बच्चे में होता है. हाँ तो टैलेंट तो था उसमें ना, कभी भी कंपटीशन होता था तो मैंने इसको कभी भी फ्लेक्सिबल जो शरीर होगा ना, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो जानते हैं कि जिसका जितना शरीर फ्लेक्सिबल होगा ना उतनी टेक्निक या दाव वो खाएगा नहीं, और वैसे ही परफॉर्म इसने इसमें भी किया, औरों को टेक्निक लगाई खाई एक भी नहीं इसने जितनी भी बाउट हुई. हालांकि मैंने इसकी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, फाइनली बाउट दी देखी थी मैंने, कि एक भय था कि बच्चे का मैं मतलब रोक नहीं पाऊँगा उस जज्बे को कि हाँ कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि हार जाए. तो उसके फाइनल के बेस में जो ये सीनियर बच्चे थे उन्होंने बताया सर इतना मत हो, वो गोल्ड लेके आएगा चिंता. तो मैंने मेरा हौसला दिया उन्होंने, तो मैंने फाइनल फाइट देखी, और जो फाइनल देखी तो उसने मेरा मान रखा या जो भी कहो देश का मान रखा, वो 100% दिया उसने अपनी तरफ से, मैं बहुत खुश हूँ.
12: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: वेट सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
3: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
2: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: और
2: बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
6: so many attacks,
5: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right and Center.
5: Hard facts.
6: War struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine. In France. In Italy.
7: At Srinagar.
6: Iron is France.
8: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello, welcome to Watch Prime 5.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
12: Launch control, 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
13: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
16: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
17: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
16: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरी डे द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु
1: सो मेनी अटैक्स
0: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France, in Italy.
1: At Srinagar.
3: I am Mr.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom, only on NDTV.
4: ए युग तुम्हारा ए रण तुम्हारा हर चुनौती तुम्हारी हर शिखर तुम्हारा तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान
5: हर सेक्टर हर स्टेट हर रीजन हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
7: वाओ मामा क्या स्वाद है
6: अरे मेरे राजा
8: सबका राजा आग पर मसाला
9: लॉन्च कंट्रोल

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
2: सो मेनी अटैक्स,
1: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
4: War struck country.
1: Hard questions.
4: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
7: In France. In Italy.
8: At Srinagar.
9: Prime Minister Trump.
10: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom. Only on NDTV.
0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
12: रियली
11: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: 1,000 students in and around Mysuru are expected to be benefited. And also the sculptor of, the idol at the Ram Mandir, Arun Yogiraj, he's also sculpted a statue of, Swami Vivekananda, and he's expected to gift that to the Prime Minister while he's, of course, in Mysuru. So it's a big event. The Prime Minister is also expected to address a small gathering there. What sort of a message he will give, considering the fact that this particular cultural center is aimed at benefiting the youngsters of the state, and especially with so much happening surrounding students and education systems, there is probably going to be a strong message that's going to come in from the Prime Minister there as well.
1: Absolutely. Deepak, keeping a very close watch on that story. Thank you very much for the moment for sharing those details with us. Moving on, ladies and gentlemen, to another big story that we're tracking this afternoon. Prime Minister Narendra Modi released another video message on Instagram. And this time, he responded to the viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. He also said and described, in fact, the language that was used by the Gen Z. He's called it shocking, including abuses that were directed at not just him, but also his mother. But instead of demanding punishment, what the Prime Minister said is that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not going to be the solution in this case and that the society must guide young people onto the right path. Here's that message that came in late last night of the Prime Minister.
2: Hi, friends. आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: And well, as expected, the politics over Prime Minister's late night video has begun. Prime Minister's video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protest has triggered a full-blown political showdown. Now, in the video, BJP and its allies have rallied behind the remarks of the Prime Minister, with the NCP now calling the message an act of an act where the Prime Minister was not apologizing, was not forgiving, but in fact, he

0: We're starting this edition with the top story that's coming in. The Prime Minister has released another video message on Instagram, and this time he has responded to the viral videos of young women that were abusing him and using derogatory languages during the Jantar Mantar protests. Now, the Prime Minister has said that the entire country has watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including the abuses that directed at him and not just his mother. But instead of demanding punishment, the Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country. He added that legal action is not the solution anymore and that society must help guide young people into the right path. Here is that video of the Prime Minister that he released late at night yesterday.
1: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. ये तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं. लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है. गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है. और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है. मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं. आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो.

0: protest. I take him back to, I think, 2008, 2009, when in one stroke, 8,500 protesters were charged with sedition by his government, Congress government. And what did Chidambaram call them? Anti-national. Years before BJP called them. So let's not have double standards. Let's stick to the issue. What is the issue? Should protest have been allowed? Yes, of course. Legal, with permission, protest should have been allowed. I am a free speech absolutist. I don't mind anybody using or giving abuses because, as you rightly said and countered the first Gen Z who spoke about it is disappointing to have such views because where do you draw that line and who draws that line? Nobody is qualified enough to draw that line. We are still suffering because Nehru drew that line and he changed the first our constitution with the First Amendment.
1: Okay, one young man disagrees with you here.
0: Just 10 seconds.
1: Okay, 10 seconds more than the young man here.
2: Just 2 points, sir. Sir talked about hypocrisy and double standard. BJP se zyada hypocrisy kisi ke paas nahi hai. 70,000 crore ka ghotala karke deputy chief minister banaye the. Second, sir, you talked about is desh mein patrakaron ko midday meal par dikhane ke liye unko jail bhej diya jata hai. You are talking about hypocrisy. You tell me, ye BJP pehle exam leak ke bare mein baat karti thi ma'am ya nahi karti thi? Agar aap government mein nahi hai, aap uske bare mein sir ek second सुन लीजिए प्लीज सर एक सेकंड सुन लीजिए. नाउ द सेकंड पॉइंट यू टॉक्ड अबाउट लाइन, सर पता है एसी हॉल में बैठ के इस एनडीटीवी के स्टूडियो में ना मैं समझ सकता हूं स्टूडेंट का दर्द और ना आप समझ सकते हैं. आप एक बार जाइए, जाके गांव में देखिए एक बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है. मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं, आप जाइए वहां देखिए बच्चे 5,000-5,000 के कमरों में कैसे रह रहे हैं. और आप हिपोक्रेसी की बात करते हो और डबल स्टैंडर्ड की. एक भाई अगर सुसाइड कर लेता है उसके भाई को आप कैसे लाइन के बारे में सिखाएंगे सर? नहीं सिखा सकते हैं आप लाइन के बारे में. आप अगर स्टूडेंट के साथ वैसा बिहेव करेंगे, नेल लगा के आप उनको मारेंगे, ठीक है? आप और आप कहते हैं कि लाइन की बात करो, वो लाइन आप भी नहीं क्रॉस कर.
1: देयर इज नो लाइन टू क्रॉस डॉक्टर रंगनाथन व्हेन देयर इज सो मच बबलिंग अंडर द सरफेस. डॉक्टर रंगनाथन,
0: पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जेन जी इतनी अच्छी पॉलिटिकल स्पीच कैसे दे रहा है, क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है क्या? नंबर 1,
1: दिस इज द रियल जेन जी. दे आर दे नो देयर पॉलिटिकल व्यू.
2: यू हैव दैट यू डोंट वांट द यूथ ऑफ दिस नेशन टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. दैट इज द प्रॉब्लम विद यू सर.
0: नो नो, वन सेकंड,
1: लेट हिम आंसर. यस,
0: I showed you respect by hearing you. Please show some respect, not of my age, but hearing my point of view.
2: Sure,
0: number
2: sure.
0: one, सबसे ज्यादा हिपोक्रेट तो मैं बीजेपी को मानता हूं. आपने ये किस एजेंडा के तहत ये मान लिया कि मैं बीजेपी को हिपोक्रेट नहीं मानता? पहली गलती वो. दूसरी गलती, जब मैं ड्रॉ द लाइन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लाइन ड्रॉ होनी ही नहीं चाहिए. इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे जेन जी, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो और सुन लो. मैं कह रहा हूं कौन लाइन ड्रॉ करेगा? कोई नहीं कर सकता लाइन ड्रॉ, क्योंकि जो मेरी तरफ से मैं अब्यूज समझ रहा हूं वो स्टेट सैंक्शन कर रहा है. एक स्क्रिप्चर है एक रिलीजन का जो कि मुझे गधा मानता है, सेटन मानता है, वर्मिन मानता है, मुझे एप मानता है, कहता है कि मुझे स्किन अलाइव होना चाहिए. okay. क्या वो अब्यूज नहीं है? लेकिन okay. वो अलाउड है. वो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर
3: रहा.
1: On the
0: yeah,
1: language,
0: और ये सबसे,
1: let me just understand this, Dr. Ranganathan.
0: Yeah,
1: in a protest, can somebody set the standards for what is acceptable, what is not acceptable?
0: Absolutely not.
1: Okay.
0: Anything is allowed according to me as far as free speech is concerned, with 4 caveats. Yeah. Do I need to mention those? I will mention them later. But let me come to the third point, which the young person with the mic was speaking, because it's very important.
1: Okay.
0: He's going down a.
1: Coming.
0: He's going down a.
3: Anand, we got it. Listen. Let me make it very clear to all of you. Congress was terrible. That's why you guys voted out. That's why your parents kicked them out. There is nothing called hypocrisy. Just because something has gone wrong doesn't give the license to any government to do wrong to you.
1: Okay.
3: Any of this whataboutery should end.
4: मैं ये कह रहा हूँ कि inquiry set up कराइए. पुलिस हो, बच्चे हो, गुंडे हो, अपराधी हो, जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो.
3: कौन करेगा inquiry?
4: मैं बता रहा हूँ. तहसीन
3: जो गुनेगार
4: बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते, नहीं तो फिर डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा. ऐसे नहीं करते.
3: अच्छा, फिर कौन करेगा वो?
4: जब आप ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, तो जो अभी सौरभ दास या तिलचट्टा पार्टी के दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज जो हम नहीं सुन सकते हैं, वो लैंग्वेज जो हम नहीं सुन सकते हैं, वो लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे. बस एक लाइन का फॉर्मूला है, रेड लाइन यहां ड्रॉ हो सकती है. दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उठा ले जाने पर हम गुस्सा हुए, तो सोनम वांगचुक से भी एक बार पूछ लेना चाहिए उन्होंने क्या कहा है. उन्होंने वो सफदरजंग गए, फिर मेदांता गया, और उन्होंने जो अपील की है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी इस पर नजर होगी कि सरकार एजुकेशनल रिफॉर्म करती है नहीं, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इतना बड़ा आंदोलन है ये, मतलब हाल के दिनों का सबसे बड़ा

0: मूवमेंट है, और जो इसका इशू था एजुकेशनल रिफॉर्म वो गायब हो गया है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। रील्स पर बात हो रही है, एब्यूजिव लैंग्वेज पर बात हो रही है, दूसरी चीजों पर बात हो रही है क्या? और अच्छा है आप पॉलिटिशियन बन जाइए, देश को नए नौजवान पॉलिटिशियंस की जरूरत है, लेकिन क्या ये पॉलिटिशियंस बनकर सचमुच इशू पर बात करेंगे या वही करेंगे जो यहाँ किया?
1: वन वेरी फेमस एक्टर हैज सेड प्लीज डोंट रिस्पेक्ट बुड्ढे जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन, सम लुक लाइक दे हैव डेवलप्ड भक्ति डिमेंशिया, इट मेक्स देम डिल्यूजनल दैट दे कैन टेक ऑन द यंग व्हेन दे कांट इवन काटो अ नाइट विदाउट फाइव ट्रिप्स टू द बाथरूम। डोंट ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ देयर एज, दे वर जस्ट बॉर्न बिफोर यू, लेट देम अर्न इट। Leave some food on a newspaper at the corner of the road at a safe distance. Don't engage. So we are already at a point where we are saying that buddhe don't deserve respect. And who will decide who is this buddhe who doesn't deserve respect? And is it a free for all now? It's all accepted.
2: Ma'am, I think as being a constitutional state, hum sabhi like beyond the politics of BJP and Congress, sir, as a Genji and as a student, I would say ki जो भी राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग हैज लिमिटेशंस एंड वो लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन लिमिटेशन कौन सी होनी चाहिए? लिमिटेशन होनी चाहिए हमारे खुद के मॉरल ग्राउंड्स पे, यानी जो हम क्या जो हम किसी को बोल रहे हैं क्या वो खुद हम सुन पाएंगे अपने ऊपर। दूसरी ओर मैं इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहा 23 जुलाई को, परंतु इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहते हुए कुछ ऐसे स्लोगन्स मिले हैं घोड़े पर ना जाने कौन कौन से ऐसे ऐसे स्लैंग और ऐसे ऐसी गालियां दी गई है जिसको कि हम सुनना नहीं चाहेंगे, जो कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में दी जाए तो हम उसको सीधा बोलेंगे कि ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल अभद्र है, लेकिन वहां पर छात्र है। लेकिन इसके कारण क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं डिफाइन है कि छात्र क्या होते हैं, छात्र का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो कोई भी छात्र बनकर छात्र के प्रोटेस्ट में शामिल होता है, कुछ भी अभद्रता का व्यवहार करता है, अंततः उसको बोला जाता है कि हम छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये
3: There's a very famous statement जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, और वो ये है कि एक कंट्री जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज पे नहीं चल सकता, उसको एक मॉरल बैकिंग मोरालिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एट द सेम टाइम वॉट इज मोरालिटी नाउ, एंड इट इज फ्रॉम बोथ द साइड, बी फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोटेस्टर्स और बी फ्रॉम द साइड ऑफ द पुलिस। द क्वेश्चन इज कि लैंग्वेज, जब लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट द ब्रुटैलिटी जो हम यूज कर रहे हैं। सो बोथ द थिंग्स कम इन टू प्ले and there will be a chain of reactions। अगर आज मैं किसी के बारे में फॉर एग्जाम्पल आई सपोर्ट अ गवर्नमेंट और मैं उसको कुछ कहती हूँ, हाँ चार लोग मुझे आकर के और कहेंगे आप कैसे अपने एंगर को चैनलाइज करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1: Also, very quickly, this gentleman here, then I will go back to Dr. Ranganathan and Anish over.
4: Yes. Hi, I'm Anurag Dwivedi. I'm a MBA finance student. So respect is like a communication. It's a two-way thing. आप दोगे आप पाओगे। और ये जो अभी कमेंट आया था कि बुड्ढों ने कुछ ऐसा मतलब बोल दिया, तो इस देश के बुड्ढे वैसे भी जेन जी इसको कॉकरोच बोल रहे हैं और वो पछता रहे हैं। सो लेट्स बी प्रूडेंट अबाउट दैट, दैट रेस्पेक्ट शैल बी अ टू वे थिंग, नॉट अ वन।
3: I mean, who said it? The Chief Justice
5: cockroach नहीं बोला है।
3: हाँ, so the Chief Justice of India used that word, but if why should people walking on the road be called buddhe who don't deserve respect? What did those old men do to be called buddhe who don't deserve respect?
4: No, I said that respect is a two-way thing. If a genry is respecting you, it's the duty of the elders to respect us back. But the elders are not respecting us, then how that you expect that we should?
1: Okay, that young lady there.
6: Ma'am, additionally, I would like to, I think yahan pe jitne log baithe, everybody would agree with the fact, as sir also, you know, lashed out about that, ki we don't take accountability for every person's individual opinions. Exactly that, if I talk about it, ki agar protest mein, if I went to the protest and I did not say anything that was offensive or heinous, so there might be, you know, antisocial elements in the protest, but not everybody in the protest is doing the same thing. So why is the entire generation responsible for what is happening over there? Gali di gayi hai to har insaan ne to nahi di hai. Additionally, agar yes sir,
7: I want to say one very simple thing because I agree with you. Please see इसमें से कितने स्लोगन्स अब्यूसिव थे और कितने स्लोगन वास्तव में हुए थे।
3: Also, like,
7: let's be honest, yeah, the abusive slogans were a small fraction of the slogans raised. There was no abusive slogan raised on the stage. What Gen Z was doing was having fun. They're doing like Subway Surfer reels and making those reels and mocking the government, and those go more viral. Any smart person with a camera knows कि अगर आप गाली दोगे तो आपकी रील की रीच लिमिट हो जाएगी। तो वो गाली देते नहीं है, आप ढूंढ ढूंढ के उनको ढूंढ रहे हो कि अच्छा चलो गाली दे दी हम खुश हो गए.
5: टू द पॉइंट आई हैव मेड, आई हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द पॉइंट आई हैव मेड. जैसे सर मैंने आपको बोला कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट बीइंग एल्डर पीपल, नाउ आई एम नॉट ड्रॉइंग द एज ब्रैकेट हियर, बट बीइंग एल्डर पीपल, डोंट यू थिंक अगर किसी ने वहां पे गाली दी तो आपको उसका रिस्पॉन्स एक अच्छी तरह से करना चाहिए था. इफ सम पर्सन इन एनी एक्शन गेव अब्यूज देयर, तो आपको नहीं लगता आपको उनको समझाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मॉब टू देयर प्लेसेस और सेंडिंग देम थ्रेट्स? दैट इज माय कॉन्ट्रडिक्शन. आई इन स्टार्टिंग सेड दैट आई एम मेकिंग अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दैट अब्यूज इज रॉन्ग फ्रॉम बोथ द साइड्स.
1: जस्ट अ क्वेश्चन, वही तो कह रहे हैं ना, नाउ इट इज बीइंग सेड दैट डोंट चेक अस, दिस इज द वे वी विल स्पीक फ्रॉम हियर ऑन.
5: इट्स नॉट अबाउट डोंट चेक अस, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू सर दैट इफ वी आर मेकिंग द बाउंड्री देन डोंट यू थिंक दैट इफ जेन जी डिड समथिंग रॉन्ग तो आपको उनको अच्छे से समझाना चाहिए था. इफ यू आर कमिंग ऑन द सेम ग्राउंड एज अस, पहला आप हमको बोल रहे हैं कि आपने गाली दी दैट इज रॉन्ग, आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट, बट आपको नहीं लगता आपको
1: डोंट फाइल एफआईआरस इफ दे आर अब्यूजिंग, डोंट कम आफ्टर देम विद
5: टेल अस एंड व्हाट वी डिड रॉन्ग.
7: अकाउंटेबिलिटी, नो नो वन सेकंड, आई जस्ट हैव टू से वन थिंग, अकाउंटेबिलिटी हैज टू
0: समझना होगा कि जो भी ये बात कर रहा है, हम सबके घर में जेंजी बच्चे हैं भाई, उनकी बात हम सुनते भी हैं, उनको सुनाते भी हैं, उनसे समझते भी हैं, लेकिन गालियां सुनना सुनाना ये तो लैंग्वेज नहीं
8: सर, लेकिन लाठी चार्ज नहीं आती है.
1: पीपल गेट देयर बैक अप व्हेन देयर आर पीपल लाइक कंगना रनौत, यू नो आई कोटेड द एग्जांपल ऑफ ऋचा चड्ढा, बट देन ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू हैव कंगना रनौत हु इज सेइंग दिस इज जनरेशन गटर, हाउ डज दिस हेल्प. जो दो तीन बच्चे हैं वो आप और भी
0: किसी को भी आप पूरी जनरेशन को एक जिसको कहते हैं ना कि ब्लैंकेट आपने बोल दिया कि ये गटर हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अगर कंगना ने मतलब मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि टीवी चैनल एंकर से बातचीत हुई, लेकिन अगर वही बात कही कि आप जो सुनना नहीं चाहते हो, आप कपड़े उतारने की आजादी, गाली देने की आजादी, तो उसकी रेडलाइन कहां ड्रॉ होगी? फिर तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं हो सकता है ना.
9: नो नो वन सेकेंड, I'm again coming to who has disproportionate power. Where does accountability set in? All of this today is being put in as if the students are on the equal footing with the government. Let me ask you, Padmaja, when those 20 students committed suicide in 2024, I'm not asking Dharmendra Pradhan, the then NTA chief is today principal secretary Chhattisgarh, where was accountability set? Is 2 years not enough to set accountability? This guy's 5,000 rupees apartment, he must be staying with 5 other people. His life is a struggle. His life is a struggle because your kids go abroad to study. You can tell them that your life is a struggle. Which Neta's kids are struggling like this? This is not right. They are the future of our country. They are struggling. They have suffered. And it is the duty of it is the duty of the government to be empathetic. You can't come and use disproportionate force and say, oh, but bro, we are equal. No, we are not equal. The power rests with you.
1: Okay, Dr. Ranganathan,
7: I have to also, no, I have to just say one more thing here, right? Let's take accountability from those abusing PM Modi. But when will we take accountability from Sachin Sharma who ordered the lathi charge and the tear gas? When will we take accountability from the police officer who ordered pellet guns to be used in the national capital?
1: It should be done now. No. Which is why the Supreme Court
7: Why has it not been done now?
1: Because
7: the government should resign then.
9: Is the Supreme Court running the point of the government?
7: How can you not take action?
1: Okay, just to be factually, factually correct, accountability should be sought, and which is why there are multiple pleas before the Supreme Court, which is now asking, it doesn't help to shout me down. It doesn't help to shout me down, which is why the Supreme Court is saying there should be an independent investigation which should see whether there was violence on the part of the police and whether there was violence on part of the protesters.
7: Until then, both are going to be investigated. Until then, the government should have the grace to suspend the officers who took this action.
1: Okay. How can people have trust, Dr. Ranganathan, when there is no accountability? And now we've moved beyond the language question also, right? Now we have come to that we had no option to pick up the bricks because nobody was listening to us. And now you are coming after us and turning us into criminals, Dr. Ranganathan.
10: Look, by all means, the people who gathered there, Padmaja, alongside you are brilliant, as you started by saying. But can I say, I'm so disappointed by some of the statements coming out. एक कह रहा है जब तक आप एक कमरे में ना रहो 10 लोगों के साथ आपको सफरिंग नहीं पता चलेगी. ये लॉजिक ये वही है कि जब तक मैं खेत में जाता रहूं, जब तक मेरे पास घर पे टॉयलेट ना हो मुझे टॉयलेट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, जब तक मेरे सर पे एप्पल ना गिरे मुझे पता नहीं चलेगा कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज है. यही चीज पॉलिटिशियंस यूज करते हैं. एंड एज फार एज अनीश गवांडे सेइंग ही इज नॉर्मलाइजिंग इलीगैलिटी, The Jantar Mantar protest, there was no lathi charge there because that was a legally sanctioned protest. Anish, do not be a riot monger, please. You are going to be a politician. When the march happened, the march was illegal and there were three stages of police action. The first action was section 144 was imposed. The second was tear gas was happening. The third was lathi charge. And the fourth was when less lethal force, aap wahan pe the kya? Were you the police officer sanctioning it? Were you in charge of sanctioning
1: Anish.
10: It? You were one in the mob. You were not the police.
7: No, I was in the mob.
10: Whose problem it was to take care of the situation. Don't talk like somebody who doesn't believe in rule of law or logic or science. I don't know which subjects you study.
7: I have been to multiple protests in my life. This was the first time when I was in the mob. And I had a lathi charge being directed towards me and tear gas being lobbed towards me. Sir, you have to listen now. Without any advance warning, the police is supposed to issue 3 warnings before tear gas is fired. The police did not do so.
10: Who said police charges, did not do so?
7: Sir, in lathi charges, the lathi is not supposed to go above the knee. The lathi is supposed to immobilize you. It is not supposed to go all the way up to people's necks. So clearly, this is a failure of the Delhi police's training. This is the failure of any kind of de-escalationary procedure on the Delhi police's part.
10: Says an IPS officer, Anish Gawande.
7: Sir, please see Meera Borwankar. Meera Borwankar, one of the most senior IPS officers in this country, has come out and said that what the Delhi police did was unacceptable.
10: You marched illegally, yes or no?
7: No, this was a failure of policing, sir.
1: Okay, young man.
10: Come up with facts or get a fact checker out because I can't counter each one of these lies.
11: With due respect, sir, पहली बात तो ये है कि चिल्लाने से सत्य बदलने वाला नहीं है पहली चीज. दूसरी बात जो अनिश सर ने कही कि वहां पर आप कैसे जो प्रोटेस्ट में देखे थे कैसी लैंग्वेजेस थी अब्यूसिव लैंग्वेज उसको आप साइड कर दीजिए. बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी थे वहां पर स्लोगन्स भी थे कि कुछ पुछ प्लीज रिजाइन कर दो ना इसको कोई नहीं बोल रहा है कितने प्यार से हम बोल रहे थे ठीक है. दूसरी बात रही बात अकाउंटेबिलिटी की सर तो अकाउंटेबिलिटी इस देश में
1: सर लेट्स जस्ट कम बैक टू द मेन इशू वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस
11: इट इज द मेन इशू अकाउंटेबिलिटी इज द
1: मेन इशू इज द वायलेंस इन द वायलेंस Yes, there were many people saying kuchu puchu.
11: Yes.
1: But there were also many people who were one with a criminal background. Two, on camera they are engaging in violence.
11: And there were few people who were non-uniform ho karke bachcho ko maar rahe the. Wo log kaun the?
1: Three, remember that the very act of marching towards parliament was an act of breaking the law. So who is accountable for that?
11: Accountable.
1: The law was broken.
11: उस वहां पर पुलिस थी पुलिस जो है सीधे लाठी चार्ज कर रही है उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं हो रही है और कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं हो रहा है यहां पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी हमारी
10: ओर से जारी वाज द लॉ ब्रोकन और नॉट
11: सर पहले जो हमारी जो लॉ की बात
10: वाज द लॉ ब्रोकन
11: सर लॉ किसके लिए बना हुआ है लॉ हमारे लिए बना हुआ है ना
10: आस्क दिस गाय
11: सर
10: वाज द लॉ ब्रोकन यस और नो
11: लॉ को मतलब फॉलो करना केवल हमारा ही दायित्व है या फिर वो स्टेट की थोड़ा उसके बारे में कोई जवाबदेहिता नहीं मांगेंगे सर. दूसरी बात तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपद धर्म की हम सर ये आपद धर्म आ गया था हमारे ऊपर क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सामने दोस्तों को मारा जा रहा है बच्चों को मारा जा रहा है सर फट गया है सर क्या जो इस्तीफा दिया गया उससे उसका मरहम पट्टी हो जाएगा उससे मरहम पट्टी नहीं होने वाला एक और बात है छोटी सी बात यहाँ पे
1: अकाउंटेबिलिटी
11: लॉ को मेंटेन इसका मतलब पुलिस ही फेल की है स्टेट ही फेल की है वहाँ पर
1: दोस्त लॉ मेंटेन करने के लिए ही तो पहले बैरिकेड तोड़ दी
11: बिना किसी
1: फिर आप और आगे बढ़े
11: पेलेट गन
1: फिर टियर गैस चली फिर आप और आगे बढ़े यू केम क्लोज टू पार्लियामेंट
11: जो है पेलेट गन चला रहे हो बिना किसी वार्निंग के एक चीज मैम यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी छोटी सी बात है डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं अकाउंटेबिलिटी की जहां पर हमारे पूर्व मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और क्या कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं हम जो है इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश के यूथ का जो टाइम बर्बाद हो रहा है हमारे देश के यूथ जो एंटी नेशनल हमारे देश के यूथ का सर एक मिनट सर छोटी पूरी बात है
12: कंफ्यूजन हो
11: हमें यहाँ पर जो
12: ये जो मार्च था उससे पहले 20 दिनों तक जंतर मंतर पर पीसफुली वही पुलिस उनको एक तरह से कहें कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की. जिस दिन ये पार्लियामेंट मार्च था हम सब लोग टीवी पर थे और हमें लग रहा था कि 3 घंटे तक जिस तरह से मॉब पार्लियामेंट के इर्द गिर्द था और जिस तरह से वो सिक्योरिटी लैप्सेस थे बिल्कुल वहां पर दिल्ली पुलिस फेल हुई और हम तो कहते हैं कि उसको पहले मैनेज करना चाहिए था. लेकिन जब आप पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ गए और मैं फिर कह रहा हूं 3 घंटे 4 घंटे तक कोई लीडरशिप नहीं थी सीजेपी की कोई बताने वाला नहीं था बच्चे कहां जाएंगे और उसके बाद जब ये सब हुआ उसके बाद ये घटना फिर आप नहीं बता सकते कि पहले मुर्गी या पहले अंडा पहले किसने क्या किया पहले पत्थर चले या पहले लाठी चली. और मुझे लगता है कि जब हम ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पुलिस बनाम बच्चे ये ऐसा नहीं है इसको समझना पड़ेगा.
1: First, give your name and what do you do?
13: Okay, so I'm Ananjay. I'm currently pursuing my bachelor's at IIT Madras. And I wanna point out that कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. आई एक्सेप्ट दैट बट द पॉइंट इज कि पुलिस जो वो एरिया जंतर मंतर से लेकर संसद तक का दैट इज वेरी हाईली प्रोटोकॉल्ड एरिया. वहां पे आप ऐसे रेंडमली टहलने नहीं जा सकते. दैट इज वेरी, मैं मानता हूँ जंतर मंतर की उनके पास परमिशन थी, बट जंतर मंतर से आगे का उन्होंने क्या रिटर्न में गवर्नमेंट से लेटर लिया था या नहीं लिया. एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट से लेटर लिया भी था तो पुलिस वालों के ऊपर मानता हूँ उन्होंने गलत किया, बट एट द सेम टाइम पुलिस वालों के पास ऑर्डर्स थे, मतलब जिन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट किया उनको मैं मान लो उन्हें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. बट अगर उनकी नौकरी है यार, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास अगर कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो दे आर फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स. तो जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं दे आर सपोज टू अकाउंटेबल.
9: लेट मी टेक हिज पॉइंट फॉरवर्ड. Only narrative we've heard in the news channels, except NDTV, other news channels, is that there were all these goons here. Somebody's a POSCO accused, somebody's a rape accused, somebody's so-and-so criminal, etc. That's the narrative we've heard. It's clearly put out by the government. Now, question one. I agree with what he said, that this is the most sensitive geography in the history of this country.

0: was the police doing? Were they snoozing? What was the Home Ministry doing? I'm not asking the Honorable Home Minister. Why did you switch off internet? Because the entire protest was running on an internet. Do you not have common sense? It's basic common sense. Point number two. This is the Delhi that's seen two riots, one bomb blast, under the same Home Ministry. Who will take accountability? And last thing, when the Honorable Ex-Education Minister resigned and he came to Parliament, I want each one of you to see the garlanding and the hero's welcome he got. 20 kids died. His daughter studies abroad. I'm not comparing it. He got a hero's welcome. If this is accountability, sorry, accountability, wo hona chahiye tha, Dharmendra Pradhan ji ka waisa swagat. Aap kya inko murkh samajhte hain, sarkar?
1: मुश्किल है कि आपने हमें सुना ही नहीं, मैं तो पहले से ही पहले दिन से मैं रिजिग्नेशन मांगने वालों में हूँ। पहले दिन से मैंने कहा कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बार बार तहसीन कह रहे हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं। अरे इस मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता अभिजीत दीपके अब्रॉड से पढ़ के आ रहा है, थोड़ा तो यार तहसीन सोचा करो। कुछ भी बोल
2: Let me ask a larger question. Is this now a model that we are going to see replicated? And are we now all resigned to the fact that now the pressure group will come from the streets and not from the parliament or the legislative assemblies of India?
3: Good morning, sir. मेरा नाम अर्पण कुमार गिरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र हूँ। मेरा ये कहना है कि सर, जैसे हम आप लोग कह रहे हैं कि अचानक से पुलिस आई और लाठी चार्ज कर दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो अभिजीत दुबके एयरपोर्ट पर आते हैं, बुक दिखाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उन्हें पूरा अलाउ करती है। अभिजीत दुबके को लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देगी, 6 जून को उनको परमिशन मिल जाता है। अभिजीत दुबके को लगता है कि ये लॉन्ग टाइम परमिशन के लिए नहीं जाएगी, सॉरी हंगर, तो वो भी मिल जाता है परमिशन। फिर सोनम वांगचुक जी आते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो भी एक दो दिन में हटा लिए जाएंगे, उन्हें भी नहीं होता है। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि हमें इनका
0: ऑर्डर नहीं,
3: हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि मुझे इनका डेली मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये देखने
0: के लिए। नहीं, वो नहीं था, सॉरी, नो, ही इज रॉन्ग।
3: सर, लेट मी कंप्लीट।
0: बोलिए आप, बोलिए।
3: ओके, तो उसके लिए अगर
0: ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए ना, क्या था?
3: उन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए थी।
0: हाँ,
3: ठीक है,
0: हॉस्पिटल ले जाना।
3: चूंकि एक मिनट, जो कि पीआईएल फाइल हुई थी, पीआईएल फाइल हुई थी,
0: ऑर्डर क्या था?
3: ऑर्डर ये था कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए,
1: वो
0: तो स्टेट से हो सकती थी।
3: मेरा सवाल ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी सरकार की मांगते हो, ठीक है, तो आप अकाउंटेबिलिटी उन बच्चों के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? अभिजीत
0: दुबके
3: जो मार खाए, जिन्होंने अनडाउटेडली विकसित बहकाने में आगे मोबिलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट में। दूसरी बात, पार्लियामेंट कोई पिकनिक प्लेस नहीं है कि आप बिना एनओसी के आ जाते हो घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं उनके ऑर्डर्स को कम से कम फॉलो कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज ने आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया, आपने 25-26 दिन पूरा प्रोटेस्ट किया, आपको जब मार्च करना था पार्लियामेंट में, बस उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिला और आप उसके लिए आकर वायलेशन कर लेते
2: हैं। इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स टू फॉलो द लॉ एंड द बेसिक पॉइंट that Dr. Ranganathan was making, that in marching to parliament beyond Jantar Mantar, the law was broken. Anish.
4: Ma'am, Padmaja, was the march to parliament announced on the 6th of June? Was it announced in the weeks after? Why was the march to parliament necessary? Kyunki ye sarkar sunna bhool gayi hai na? 31 दिन वहां पे दिन रात किसी को बैठना पड़ता है। आप संसद 200-300 मीटर दूर रखते हो, आपको तब तक आवाज सुनाई नहीं देती है, तो आवाज सुनाई देने के लिए किसी को आपके दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है। Nirbhaya protest, and a lot of us raised our voice against how the Congress government shut down the Nirbhaya protest. Even then, मैं एक ही सेकंड बोलूंगा आपको, तभी भी जब इंडिया गेट पर लाखों लोग आ गए थे, उनको वाटर कैनन से हटाया गया था, पेलेट गन इस्तेमाल करने की बदतमीजी,
3: एक शॉर्ट टाइम
4: देश में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, किसी देश, इस देश में,
3: किसी सरकार, मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। आपने कहा कि सरकार सुनना भूल गई थी, तो मैं बता दूं कि ये वही सरकार है जिसने फार्मर्स के लिए 11 बार कॉन्वर्सेशन भी करी थी और उसके बाद हमने फार्मर्स बिल को रिपील करने के लिए, ठीक है?
5: मैं ये कहना चाहता हूँ,
2: डॉक्टर रंगनाथन, यस।
6: Yeah, so, you know, I need to focus.

0: on not just the voters, the Gen Z voters, but whom they're going to be voting for in the future. And I hope my good friend Anish doesn't mind. They're going to possibly be voting for him. What he's saying is कि हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हमने लॉ को तोड़ा. ये वही लोग हैं जो दिस इज टेक्स्ट बुक एनआरकी. आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी और आर वी लिविंग इन एन एनआरकी. व्हाट ही इज सेइंग इज हमारी बात नहीं सुन रहे इसलिए पार्लियामेंट में बात सुने इसलिए हमने इलीगली मार्च कर लिया दैट एंटायर एरिया. एंड आई वॉन्ट टू आस्क देयर वॉज अ स्टूडेंट आउट हियर Who made the point that the entire area is a secure zone? I am hazarding a guess out here. I don't know who that student is, but you take the mic to him. I am sure he is either studying science or engineering. इसमें rational thought की जरूरत है. Please ask.
1: He's a law student. He's a law student. Why do you have such a low opinion of law students? Yes.
2: He can argue both.
1: So let me ask you this. Let me ask you this. Okay, just a second. Just a second. I again want to come back to the question. Are the laws now going to be decided on the streets? Is the Jantar Mantar model now the acceptable model moving forward?
3: First of all, when the previous exam papers leaked, no accountability was held. So, and it is the right of the people to protest. Why are we saying that we should have choices? We can have both. We can go to the courts and we can protest as well. And another, we are
1: so
3: not talking.
1: Let me ask you this. Tomorrow you give a competitive exam. Somebody is not happy with you qualifying. If I manage to get 5,000 people, aapka naam kya hai?
4: Yash.
1: Yash. Kal ko main kahun, Yash ka admission cancel kar do. Main zyada deserving thi. Main nahi agree karti ki Yash ko admission milna chahiye. Aapka admission rad ho jana chahiye.
2: That's trivializing.
1: No, it's about the pressure group.
2: This was people who died.
1: Look, it's about the pressure group, Tehseen. Today, the fact is,
2: because he got admission. There were people who died.
1: There are many people who have legitimate arguments and causes, but they do not manage to mobilize people. So they are unheard. And unfortunately, that is the precedent that has been set.
5: सवाल करना चाहूंगा. 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, 2015 में प्री नीट का पेपर लीक होता है, एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2026. 15 से लेके 26 तक कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात की? जब तक हम संसद तक नहीं पहुंचे, कौन सा ऐसा नेता था, प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री, जिसका कोई भी बयान आया, ट्वीट आया, या किसी ने कुछ भी रिजाइन की बात की? तो जब तक अगर हम संसद पर नहीं जाते हैं, अगर भगत सिंह ने लंदन में जाके उस बम को नहीं फेंका होता, तो किसे पता लगता कि भगत सिंह क्या कर सकता है? तो दिस इज वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट.
1: विल द सीजेपी प्रोटेस्ट हैपन नेक्स्ट एट कर्नाटका एंड पंजाब? व्हेन इज इट हैपनिंग? बिकॉज कांग्रेस इज प्रोटेस्टिंग. आई हैव टू से द कांग्रेस इज प्रोटेस्टिंग इन पार्लियामेंट, एंड यस्टरडे चरणजीत सिंह चन्नी प्रोटेस्टेड इन पंजाब ऑल्सो. व्हेन इज द सीजेपी प्लानिंग टू प्रोटेस्ट इन पंजाब?
6: आई सर्टनली होप दैट दे विल प्रोटेस्ट इन पंजाब सून, बट व्हाट आई विल से इज दैट what has unfolded over the last few weeks should worry the government. If I were the Home Minister and the Prime Minister, I would call for an all-party meeting, because there is a fundamental disconnect between this government and young people. If you feel like you are not being listened to, if you feel like actions are being taken without you being consulted, then there is going to be a democratic trust deficit that is very difficult for any government, for any political party to overcome.
1: Okay, tell me your name. What's your point?
7: So I'm Ronak Chaudhary, and currently I'm a class 10th student and the youngest among all of here people here.
6: So are you Gen Alpha now?
8: Yeah.
7: So my question is to the Congress. See, accountability cannot be selective, right? So main aapke samne kuch facts and figures rakhna chahti hu. 2005 Railway Recruitment Board ka exam leak hota hai, no minister resigned, no accountability taken. 2011 mein AIEEE ka paper leak hota hai, no union minister resigned, no accountability taken. Rajasthan pre-medical test 2008 में लीक होता है, अगेन नो अकाउंटेबिलिटी टेकन, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड.
2: नो लिसन, आई एब्सोल्युटली थिंक ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव लेट डाउन यू पीपल. व्हाई शुड आई डू व्हाट अबाउट री? देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन. इट इज योर लाइफ, योर फ्यूचर. यू थिंक द कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर इज गुड? ही इज टेरिबल. द पॉइंट इज, आई होप कॉकरोच प्रोटेस्ट. इफ दे डोंट, it is not the responsibility of cockroach to protest.
8: They are
2: students. It is the responsibility of the opposition there to bring down the Congress government. And please do it. I will support you. I think where it is wrong is wrong. Let's learn to stop this whataboutery. If people are dying, if people are losing out, we must.
1: Everyone is not voting for Whataboutry? I think she is only saying I demand equal accountability of everyone.
2: I think
1: not whataboutry.
2: I think you should. And I think, sir, one second. I think you should. I think you're absolutely right. I don't even demand of cockroach. I think the opposition in Karnataka must do it. And if they don't do it, they are failing you. I think the Congress should back up. I totally agree with
4: you. ये कमाल हो गया. पहली बच्ची है जिसने ना तो एब्यूजिव लैंग्वेज की बात की, सिर्फ इश्यूज की बात की और तुरंत ये व्हाट अबाउटरी करने लगे. व्हाट अबाउटरी नहीं है भाई, फैक्ट्स को रखना. ये व्हाट अबाउटरी कैसे? और मैं कह रहा हूं बहुत सीरियस है ये. किसी ने अभी कहा कि अगर शायद अनीश ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर डेमोक्रेसी में किसी को भी लगे, कोई भी एक जनरेशन को लगे कि अगर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है. झारखंड में हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे. झारखंड में देश के दूसरे राज्यों. सवाल यहां ये, क्या हम ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम है किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक पर रेजिग्नेशन दिया है. हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिफॉर्म होंगे.
7: नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉइंट. बट जब अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अकाउंटेबिलिटी लेके, आई नो दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल, दे हैव जस्ट अमेंडेड द बिल एंड दे आर प्रपोजिंग इट इन द पार्लियामेंट. बट आई बिलीव दैट द ओपोजिशन जो अपोज कर रही थी, अब तो पास हो गया खैर, बट जो अपोज कर रही थी, एंड वन ऑफ द मिनिस्टर सेड ओपोजिशन का काम है अपोज करना. तो यू गाइज आर रियली ओल्डर देन मी, ठीक है. तो बट हमने क्लास 8 की सिविक्स बुक में पढ़ा था, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन द ओपोजिशन एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज अ ऑब्स्टिकल टू आवर प्रोग्रेस.
2: राइट. सो कैन आई
7: very interesting one point. I think more people want to come in. Just a second, then I'll go to Dr. Ranganathan. One point.
8: Ma'am, two things. First, जब आप बात करते हो blame, सुनो, the biggest problem of India is, ma'am, we play blame game. हमें history बहुत पसंद है. फिर तो हम बात करते रह जाएंगे कर्नाटका में से, पंजाब. अरे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लो, हम next पे भी आ जाएंगे. It is the duty of media to ask question, not the government. हम सुधार लेंगे उस चीज को. पहले आज जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लेते हैं, मैम. वो बहुत
1: You asked a very good point. What's your name?
9: Anurag.
1: Anurag, you're absolutely right. It's the job of the media to ask questions of the government. And what this young lady also said, she's asking questions of the government only.
2: No.
1: But the government of Karnataka and the government of Punjab equally accountable like every other. Just a second. Dr. Ranganathan. It's not a blame game. It's asking for equal accountability. Dr. Ranganathan, yes.
0: Thank you. Look, this is textbook hypocrisy. When the demand, we're not going into history. When Dharmendra Pradhan was the education minister, there were two other sitting education ministers under whom the same malafide happened. Bangarappa of Congress Karnataka and Harjot Singh of AAP Punjab. They continue to be education minister. So, ye kehna pehle isko karo wo nahi. Khud hypocrite ho, double standards hai. Maan lo, aage badho. Number two, for once I agree with the Gen Z Padmaja. Give me 30 seconds. Why? Because yes, this is a... It does not...
10: ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಔರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಮಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮೈಸೂರು ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿದಾನಂದ ಜಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಔರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದವೇಂದ್ರಾನಂದ ಜಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋತ್ ಜಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಸಂಸದ್ ಯದ್ವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ ಚಾಮರಾಜ್ ವಾಡಿಯಾರ್ ಜಿ, ವಿಧಾಯಕ ವಿಜೇಂದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ, ಕೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಜಿ, ಅನ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತಗಣ ಔರ್ ಭಾಯಿಯೋ ಔರ್ ಬಹನೋ, ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮೈ ಮೈಸೂರು ಕಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ದೇವಿ ಮಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂ. अभी दो दिन पहले ही हम सभी ने गुरु पूर्णिमा भी मनाई है।

सत्संग करने का अवसर मिला था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे फिर मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम से जुड़े संतों से, मेरे गुरु बंधुओं से मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। आप सभी की उपस्थिति की वजह से आज मैसूर की इस पवित्र भूमि पर मुझे एक अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही है। मैं आप सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, मैसूर भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहां के मंदिर, यहां की परंपराएं और उत्सव, मैसूर का दशहरा, यहां के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है। और ये देखकर बहुत संतोष मिलता है कि शहर ने इस विरासत को उसी कुशलता से सहेजा भी है, संवारा भी है। श्री रामकृष्ण आश्रम और स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियां भी मैसूर की विरासत का ही एक समृद्ध हिस्सा है। कुछ देर पहले मैं उस ऐतिहासिक भवन में भी गया था जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवास के दौरान कुछ समय बिताया था। कर्नाटका के कितने ही विद्वान और मनीषी इस स्थान से जुड़े रहे हैं। राष्ट्र कवि कुवेंपु जैसे महापुरुष जब मैसूर में थे, उनका भी रामकृष्ण आश्रम से गहरा जुड़ाव था। आज स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर यानी विवेक स्मारक के उद्घाटन के जरिए हम इस मिशन को नया विस्तार दे रहे हैं। इसके लिए मैं श्री रामकृष्ण आश्रम और इसके जुड़े सभी विद्वानों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, व्यक्ति से विभूति का निर्माण एकाएक नहीं होता। इसके लिए हमें जीवन की अनगिनत परीक्षाएं देनी होती है, साधना करनी होती है, तप करना होता है, खुद को तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। ख्याति के बाद तो संसार पीछे खड़ा होता है, लेकिन तप के समय महान विभूतियों को पहचानना आसान नहीं होता। जो साधक को तपस्या में पहचानता है वो उसकी सिद्धि का सहभागी भी होता है। इसलिए भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में मैसूर का इतना अहम योगदान था। करीब 130 वर्ष पहले स्वामी जी एक युवा सन्यासी के रूप में भ्रमण करते हुए मैसूर आए थे। तब उनकी प्रसिद्धि वैसी नहीं थी, लेकिन विचार उतने ही ऊंचे थे। उस समय उन्हें जिन लोगों ने पहचाना, जो उनके साथ जुड़े, उनमें से एक प्रमुख नाम मैसूर के तत्कालीन महाराजा के भी था। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे तो उन्होंने वहां से मैसूर के तत्कालीन महाराजा को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने स्वयं महाराजा के सहयोग

का उल्लेख किया था। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय चेतना को आत्मसात किया था, उन्होंने शास्त्रों को आत्मसात किया था, जो कहते हैं परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात वास्तव में वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। इसी मंत्र पर चलते हुए मैसूरू के इस श्री रामकृष्ण आश्रम ने पिछले वर्ष अपने 100 साल पूरे किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हो या प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, श्री रामकृष्ण आश्रम ने स्वामी विवेकानंद जी की विरासत को जीवंत रखा है। मुझे विश्वास है विवेक स्मारक साधकों और श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक उत्थान का एक तीर्थ बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। हमें इस विवेक स्मारक में इसलिए ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो, जिन युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीप टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट
अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है, वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होती है। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। चार हजार से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा PM श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ समानता को भी उतना ही अहम मानते थे। शिक्षा में भेदभाव न हो, अवसरों में भेदभाव न हो, आज ये देश का विजन बन गया है। आज बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। NDA में बेटियां राष्ट्र के लिए योगदान दे रही है। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा हो गई है। इससे भाषा के आधार पर अवसरों में होने वाले भेदभाव पर लगाम लग रही है। साथियों, युवा शक्ति का स्वास्थ्य अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है।

0: इसलिए आज खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने देश भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है और साथियों आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें विवेक का स्मारक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। ऐसे स्थान पर मैं हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों मैसूरु को अक्सर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला है। मैं इसके लिए यहां के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। क्या इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में स्वच्छता के संकल्प को निरंतर मजबूत करते रहेंगे? हमें यहां की प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करना चाहिए। हमें पर्यावरण से जुड़े संकल्प लेने चाहिए। हमें पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। साथियों आज ही यहां वाल्मीकि रामायण के कन्नड़ा अनुवाद का विमोचन भी हुआ है। मैं कन्नड़ा भाषा से जुड़ी एक अपील भी करना चाहता हूं। कर्नाटका महान लेखक और कवियों की धरती है। कन्नड़ा भाषा, कन्नड़ा भाषी लोग हमेशा से पढ़ने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन के इस युग में इस स्वभाव को और बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम युवा पीढ़ी को कन्नड़ा साहित्य से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? साथियों मैसूरु अपने सिल्क, चंदन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम किसी को उपहार दें तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भारतीय के हाथों और पसीने से बनी चीज हो? इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही एक और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। साथियों स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था उसे पूरा करने का दायित्व आज की पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है विवेक का स्मारक इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करेगा। मैं एक बार फिर यहां एकत्र पूज्य संतजनों, गुरुबंधुओं और मैसूर के लोगों को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Well, that was the address of the Prime Minister who inaugurated Swami Vivekanand Cultural Youth Center. This is a Vivek Smarak at Sri Ramakrishna Ashram in Mysuru. Now, this center that has been inaugurated just right now by the Prime Minister, it aims to promote the value-based education systems that should be put in place. There's also leadership development that the Prime Minister spoke about, personality building among young students, and the manner in which the teachings of Swami Vivekananda continues to be relevant today as well. Vivek Smarika, it commemorates Swami Vivekananda's historic visit to Mysuru in November 1892 during his journey across India. Indian politics and the entire cultural thought during that century has been heavily influenced and was heavily influenced by the thought

0: मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాటలంటా ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాటలంటా ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
2: And Prime Minister Modi's video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protest has triggered a full-blown political showdown. In the video, BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying that the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such anger in the first place. Congress leader P. Chidambaram questioned whether Prime Minister would also forgive the abusive BJP trolls online. Shiv Sena UBT asked who had given and who had sought any kind of forgiveness from the Prime Minister, insisting that the students were fighting for their rights and for justice.
3: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली, त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही, पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
4: के हमारे देश के बच्चे हमारा भविष्य भी है, और युवा अवस्था में कई बार उत्साह में जोश में कोई ना कोई किसी के वजह से कुछ बातें बयान जो उनके जुबान से निकल जाते हैं. मोदी जी ने यही कहा है कि मुझे मेरे बच्चों को माफ़ करना, इसमें कोई छोटापन नहीं लगता है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़प्पन है उनका. और देश हमारा जो है ये लोकतांत्रिक तरीके से ही चल सकता है, सभी को साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे तभी देश का भी भला होगा।
5: किसने कहा कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमें माफ करिए? मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए। विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश के सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए। सरकार हार गई है, सरकार डर गई है, सरकार सदन से पार्लियामेंट से भाग गई है, तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ करिए? या अपने आप माफ कर रहे हो? किसने माफी मांगी आपसे?
6: ये आंदोलन कॉकरोच के नाम पर जो है, जैसा नाम है वैसा काम है। जिन 10,000 बच्चों को रास्ता में उतार करके उनसे बदतमीजी कराया गया, उनका संस्कार खराब किया गया, उसका माँ बाप भी आज शर्मिंदा है, वो बच्चे भी खुद रो रहे हैं कि गलत किया हम लोगों ने, हमारे हाथ से गलत काम हो गया है। लेकिन जिन्होंने कराया है उनका तो कमर में रस्सी लगना चाहिए कि आगे इस प्रकार भारत के जो आंदोलन को कोई कलुषित ना करे।
2: Now the controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skit on the alleged Chanda Chori has intensified with multiple complaints, an FIR and protests. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Bansuri Swaraj alleging that the skit hurt religious sentiments. A separate complaint by seers and lawyers in Varanasi has also led to an FIR being registered. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned it. VHP President Alok Kumar accused the opposition of mocking a sacred national cause. Meanwhile, students have erupted in multiple states. VHP workers staged demonstrations in Lucknow with protesters condemning the act and burning his effigy.
7: जिन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
2: With that, it's a wrap on this edition. For more news and updates, you can log on to our website, ndtv.com. Thank you for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
4: रियली
3: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम, एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
5: From the newsroom to the studio,

0: सुबह।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: POK के firing range में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
7: रियली?
6: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैंगर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम, एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: Welcome back. And amid Rahul Gandhi's criticism of the government crackdown on protesters for posting abusive content, the Karnataka Congress legal cell has issued a complaint against three Instagram handles in Bengaluru for posting abusive and defamatory videos against Rahul Gandhi. In their complaint, the KPCC flagged defamatory content against Rahul Gandhi's in these videos, which contained obscene and sexually explicit language, according to them. They also raised concerns about the abusive comments posted by various users under the video with the tagline, "Why is the opposition silent?" An FIR has been registered by Bengaluru Cybercrime Police invoking Section 67 of the IT Act for sharing obscene material and BNS Section 352 for intentional insult. Police is now investigating to identify the account holders who have been named in this FIR. All right, we'll keep it track of that and much more. For now, slipping into a very short break.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
3: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
4: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
5: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
6: हेलो वेलकम टू वाचिंग प्राइम 5 विद रिहाइशा सैगल ऑन सैटरडे
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
7: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
8: Now watching NDTV 24/7.
9: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
10: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
9: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially.
0: Good evening, hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Prime Minister N. Maysuru sends a message to the youth, says youngsters must be guided and that youth is driving the progress of the country. An NSA makes a fervent appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in the country's history that must not be allowed to slip away. And the Kaveri water row has intensified as Karnataka farmers' protests in Mandya are raising Go Back Vijay slogans. Screenings of Vijay new movie are cancelled at several theatres, while Stalin urges Chief Minister to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah seeks probe into the Kulgam terror attack, questions its timing amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar releases an ex-gratia of rupees 10 lakh for the families of the two terror attack victims. JNK LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after IMD issued a red alert for 30 districts. And a big boost to India-China trade ties. The historic Silk Route via Sikkim reopens after 6 years, reviving cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through the Nathula first began on the 6th of July 2006. It was suspended during the pandemic. Prime Minister Narendra Modi late last night released another video message on Instagram. Now this time responding to the viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protests. He also said that the entire country watched what happened, and the Prime Minister described the language used as shocking, including abuses directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said he wants to forgive what he called the misled youth, adding that legal action is not the solution and the society must help and guide young people onto the right path.
11: Hi friends, aaj to man karta hai bas aap se hi baatein karu. Jantar Mantar par jo kuch bhi hua desh aur duniya ne dekha hai. Kuch shararti bachchon ne baddi baddi gaaliyan boli, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं. उन्हें राह दिखाना हमारा काम है. गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है. और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है. मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं. आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो.
12: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था. जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है. स्वतंत्रता ये नहीं थी. आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा. मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा. इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा.
13: अलांटी प्रधानमंत्री ने చాలా మంది ఆయన మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాట్లాడుతూ ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి. బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
0: Prime Minister Modi's video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protest has triggered a full-blown political showdown. In the video, BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying that the country's youth need direction, not punishment. Opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such anger in the first place. Congress leader P. Chidambaram questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Shiv Sena UBT asked who had even sought forgiveness, insisting that the students were fighting for justice.
14: विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली, त्या मोदीजीने आणि अमित शहाने विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहारे येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
0: And Prime Minister Modi was in Mysuru, Karnataka to inaugurate Vivek Smarak. On the backdrop of the Gen Z protest, Prime Minister highlighted the role of India's youth in driving country's growth story during the address in Mysuru when he spoke. The Prime Minister underlined the importance of empowering young Indians in the right direction and giving them the right opportunities. Prime Minister said that the youth of the country are powering India's progress and making the nation proud across various fields. He also spoke about the education system, stressing the need to provide youth with the right guidance, skills and support to contribute towards country's future.
15: Aaj Bharat ki arthvyavastha sabse tezi se aage badh rahi hai. Kiski wajah se? Bharat ke yuvaon ke samarthya se. Aaj Bharat mein दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से. आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से. आज भारत AI, Deep Tech, Space,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
4: रियली
3: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम।

0: To the studio. To the thick of political action.
1: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond...
2: Welcome back. A major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after terrorists targeted migrant workers at a brick kiln. Killing two labourers from Chhattisgarh, former JNK chief minister has made explosive claim about the attack and asked that he doesn't know why this happens only when we ask for restoration of statehood. Security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to trace the backed terror outfit Lashkar-e-Taiba, with operatives Latif Bhatt and Waris emerging as key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of Rs 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
3: और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले
4: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है
3: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे
5: हैं अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें
6: नहीं क्या करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं ये भी हम जैसे इंसान हैं हमारे जो लोग यहां मजदूरी करते हैं काम करते हैं अपने बच्चों को पालते हैं इतनी दूर ये क्यों आते हैं क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं यहां कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए वहाँ की तो देगी देगी दूसरा इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं
7: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ का वातावरण सुरक्षित है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है इस बार भी भुगतना पड़ सकता है देश के प्रधानमंत्री जी और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी जो लोग भी इसके पीछे हैं चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे
8: देखिए आतंकवाद आतंकवाद है आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेवारी ली है चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया उसकी CCTV फुटेज आई है और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए आतंकवाद आतंकवाद है आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है
9: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन जब इस उम्र में जाके इस तरीके के बयान देता है

0: शायद भाई साहब सरिया गए हैं। और फिर वो बात आती है कि आतंकवाद की जननी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इन लोगों की भी कहीं ना कहीं तारे जुड़ी होती है। तो इस वक्त जब जम्मू कश्मीर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी छुटपुट हरकतें होने के बाद इस तरीके का घिनौना बयान देना है, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, और बजाय इसके कि आतंकवाद को बढ़ावा दे, इसकी निंदा करके जो ये घटना घटी है उस परिवार के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना चाहिए।
1: Gujarat is once again battling a fresh spell of monsoon fury. Incessant rainfall has triggered flood-like conditions across several districts, with roads submerged, rivers swelling, and normal life thrown out of gear. The IMD has issued a red alert for districts including Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Butar, and Surendranagar, warning of extremely heavy rainfall. Rescue teams remain on standby as authorities evacuate residents from vulnerable areas and urge people to stay indoors. My colleague Akhil has filed a ground report. Let's take a look.

0: now I am at Kasba village. This is one of the villages of Nawsari district. And this very road connects Nawsari to Surat. Right now you can see the visuals over here. The water current can be seen. And the impact and the magnitude of the water can also be seen. Right now you can see from this very side, from the side of Nawsari, a tractor is just moving towards the side of Surat. The entire road has been blocked. The entire road has been choked. Right now, you can see the visuals behind me. These are the people who have been brought in over here. They have been migrated from a low-lying area. सभी लोग जो हैं वो स्टील की कंपनी में काम करते हैं.
1: सरिया लाइन का.
0: सरिया लाइन का काम. कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है बाढ़ के पानी की वजह से?
2: परेशानी तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर. इतना बोलिए तो यानी कि बहुत दिक्कत, परेशानी तो बहुत है.
0: खाना पीना कैसे हो रहा है?
2: खाना पीना
0: तो जल रहा है, नहीं जल रहा है?
2: चूल्हा नहीं जल रहा है.
3: हम लोग थोड़ा बहुत भी भीख भाग के काम कर लेते थे, पैसा हो जाता था. लेकिन अभी का पानी का वजह से हम लोग को इधर आके बैठ के रहना पड़ता है. पूरा महीना हम लोग का
4: तीन बार हम लोग का हुआ है आने जाने का, तीन बार.
0: एट सच कम्युनिटी सेंटर्स पीपल फ्रॉम लो लाइंग एरियाज हैव बीन टेकन आउट. दे हैव बीन माइग्रेटेड ओवर हियर टिल द टाइम वाटर लेवल गोज डाउन. टिल द टाइम दे विल बी केप्ट ओवर हियर अनलेस अनटिल द सिचुएशन इंप्रूव्स ऑन ग्राउंड जीरो. विद वीडियो जर्नलिस्ट पवन आकल फॉर एनडीटीवी 24/7.
5: And the flood crisis in Odisha's Jajpur district has deepened after seven river breaches affected over 1 lakh people across nearly 250 villages. Thousands have been evacuated as rescue and relief operations continue. My colleague Dev Kumar brings you this ground report from the flood hit district.
6: Situation in Odisha's Jajpur has turned devastating. Around 250 villages are inundated. Right now, I am from the zero ground. You can see the visuals from here. Near about the villages are just battling with their life from last 3 to 4 days. And the flood has turned devastating. 250 villages are inundated. Over 1 lakh impacted after 7 breaches. The flood situation in Jajpur has turned critical following multiple river breaches across the region. Around 250 villages across 100 panchayats have been affected, impacting nearly 1 lakh people.
7: पानी यहाँ पे 5 फुट पानी था, रास्ता में 5 फुट पानी है, घर के अंदर 2 फुट पानी है.
6: घर के अंदर 2 फुट का,
7: 2 फुट 3 फुट पानी है घर के अंदर. कोई खाना पीना नहीं बना पा रहे. सोने के लिए छत पे जाते थे, बारिश डेली हो रहा है, अभी छत पे भी सो नहीं पा रहे.
6: बारिश कब से कम है?
7: बारिश तो लास्ट 1 महीना से हो रहा है, लेकिन ये पानी भी आया, बारिश भी लगातार हो रहा है.
8: 15 दिन से पानी है यहाँ पे.
6: पानी, पानी में स्ट्रगल हो रहा है लाइफ
8: बहुत.
6: कितना तक पानी था?
8: और यहाँ तक पानी था.
6: अभी फिलहाल गांव के अंदर हाल कैसा है?
8: आप तो देख रहे हैं ना कैसा है. बहुत ज़्यादा परेशान है हम.
6: बहुत ज़्यादा परेशान. सरकार की तरफ से पहुँचे, प्रशासन
8: पहुँचे हुए इतना ज़्यादा.
6: डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, देयर स्पेशल रिलीफ टीम एज वेल एज ओडराफ टीम हैज रीच्ड द विलेज एंड हैविंग द रेस्क्यू वर्क्स. फ्रॉम ओडिशा जाजपुर, देव कुमार रिपोर्ट्स फॉर एनडीटीवी.

0: Indian judoka to stand on top of the Commonwealth Games podium. It was an emotional victory. Asmita dedicated the medal to her late father, who passed away last December, saying she had almost lost hope before rebuilding her career and returning to the mat.
1: उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि कोई इतना ऊपर जाएंगे करके, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में, तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ।
0: A short while later, 23-year-old Harsh Singh delivered another milestone. Facing Australia's Joshua Katz in the men's 60kg final, Harsh stayed composed under relentless early pressure before producing the decisive throw with less than a minute remaining. Harsh became India's second Commonwealth Games judo gold medalist.
2: मैं बहुत खुश हूँ आज अपनी फैमिली के लिए मैंने गोल्ड जीता है और आज सारे साथ में थे हमारे कोचेज एंड पूरे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबके कॉल मैसेज आ रखे थे कि अच्छे से खेलना और गोल्ड लेकर आना इंडिया के लिए। मैं दिल्ली से आता हूँ और क्या कहते हैं मैं अपनी मम्मी को समर्पित करना चाहूँगा ये मेडल।
0: The silver lining to the evening's effort came with another medal from Yamini Maurya. She lost gold but won silver in 57kg category to end India's remarkable judo campaign on the penultimate day of competitions at the 2026 Commonwealth Games. Rika Roy for NDTV.
3: Well, Neeraj Chopra, the inspiration for a generation, put up an inspired effort to clinch the Commonwealth Games silver in Glasgow. He was joined on the podium by compatriot Yashveer Singh. The gold went to Rumesh Tharangapathirage from Sri Lanka, who won the country's first ever athletic golds at the CWG.
0: Neeraj Chopra, in his comeback quest, threw 80.87 to open the evening's proceedings. The Tokyo Olympic champion, throwing into a stiff headwind, responded with 85.83 on his second attempt. This was also his season's best. At that stage, it was good enough to put him in the gold medal position. Then came Sri Lanka's gatecrasher, Rumesh Tharangapathirage. He arrived with the reputation of a giant killer and lived up to it. A massive, massive throw of 89.75 meter from the Sri Lankan pushed Neeraj down to the second place. Neeraj tried to fight back, but the weather and the wind conspired against him. His remaining throws of 81.29 and 80.73 meters were not enough to reclaim the lead.
4: Silver medal hai, par abhi try karenge ki abhi नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे और बढ़ाएं। नहीं, प्रेशर तो क्या है, बस ये है कि अगर 100% फिट हो तो फिर वो फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा रहती है, मतलब ये लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच सोच के कदम रखना पड़ता है, तो आज वही था कि थोड़ा मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूँ और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूँ, क्योंकि वेदर कंडीशन के हिसाब से वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी और फिर भी थोड़ा ठीक था।
0: It was not the Neeraj versus Nadeem contest many had expected, as the Commonwealth champion from Pakistan was unable to defend his title. After opening with a foul, Nadeem managed only 77.41 meter and 75.39 meter with his two next attempts. Those efforts left him outside the top 8, ending his campaign just after 3 throws. The other big story of the night belonged to another man from Haryana, Yashveer Singh. A huge throw in the dying moments of the javelin final was enough to edge past Dow Smith of South Africa. His personal best of 85.41 meters earned him the bronze medal. In the process, he finished ahead of the likes of Anderson Peters and Arshad Nadeem in what was arguably the strongest Commonwealth Games javelin field ever assembled.
5: अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.3 की समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन भी पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं, तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहा था, फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, लास्ट थ्रो अच्छी निकली थी उसमें।
0: It was a statement performance from the subcontinent, with Sri Lanka taking gold and India claiming silver as well as the bronze medal to complete a clean sweep of the medals in the men's javelin final. Rika Roy for NDTV.
3: Well, that story and much more up on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you for watching.

0: अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनरली इन 2024 में 7% तब घट के 6.5% सुनो तो फिर सब कुछ 8-15 में ही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है, 6.7% था फीमेल्स में, घट के 6.4 हो गया है। अब आप आ जाओ करके वेज वर्कर्स में, वेज वर्कर्स की जो रेगुलर वेज है वो बढ़ गई है 22% से 23%।
1: एज ग्रुप भाई,
2: मैं एज ग्रुप ही ले रहा हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ लिखा है।
3: ओके, वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, यू नो व्हेन वी कम बैक अराउंड इंडिपेंडेंस डे विद better numbers, bigger sample size, then we will look at all of this data, the micro data, and if Pradeep Bhandari is saying that there are concerns but not as widespread as the survey makes it out to be, let's wait and see, because ultimately the people will speak in the manner they know best when it comes to the EVM by pressing the button that they want. Thanks very much in the meantime, all gentlemen, for having joined me. Thanks for watching.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का

0: students were fighting for justice.
1: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजींनी आणि अमित शहांनी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या काय म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसा.
0: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
2: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
3: Modi ji clocked it and provided a legislated solution.
4: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
5: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
6: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
2: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
7: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
2: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
8: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं. जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे. एक communication तो key होता है हर चीज का.
9: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
10: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel they it's more of a performative kind of thing and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
11: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or. शुड बी लाइक के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप यूजलेस हो.
12: But over the past couple of days we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear, that to win the elections the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
0: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of Rs 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
13: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले।
14: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है।
13: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते हैं।
15: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
16: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
17: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे।
18: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: about the attack and asked, why is it that the attacks open and happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
2: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है।
1: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते
3: हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
4: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
5: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
6: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या पद्धतीने काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसा.
1: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
2: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
3: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
4: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
5: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
6: Hum jo Dilulu ke bare mein bol rahe na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
2: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
7: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
2: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
8: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं. जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे. एक communication तो key होता है हर चीज का.
9: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
10: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
11: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप useless हो.
12: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
1: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two labourers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistan Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
13: और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले।
14: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
13: मुझे नहीं पता ये क्यों उस होता है जब हम लोग स्टेट आउट मांग रहे होते।
15: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी, लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
16: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाजब

0: कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
1: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
6: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
6: I am Mr. France.
4: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
7: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
8: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
9: The Ayatollah Khamenei is gone.
10: There has been a missile attack right behind you.
11: And we need to rush into a shelter.
12: Heading there.
13: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
14: What seems settled for me?
15: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, in a historic step, India and China will resume border trade through the old Silk Route. Border trade between India and China through the historic Nathula Pass in East Sikkim will resume from today after a gap of 6 years since COVID pandemic. The border trade with via the old Silk Route at Nathula had initially reopened on July 6, 2006 amid huge expectations of improving relations and trade between India and China. Now, it was also expected to help in achieving economic prosperity in areas surrounding the Nathula Pass in both the countries. The border trade through the Nathula Pass remains officially open for about 6 months every year from May to November. The resumption of the trade will end a six-year suspension that affected traders and border communities in the region, especially Sikkim. Here's our ground report from that area. We leave you with this report.
16: It is a historic day as far as India-China trade relations are concerned, as the border trade between the two neighboring countries is once again going to start at the Nathula Pass in East Sikkim. This border trade, which first started in 2006, after over four decades that it was suspended due to the 1962 war, in 2006 the border trade started between the two countries, but it was suspended during the COVID pandemic. And from today onwards, both the countries have come together to restart the border trade. You can see here there are a lot of banners being put out. We are reporting from East Sikkim, and ahead of this is Nathula, on the famous Nathula Pass, through which the border trade will take place. Remember, both the border trade and the Kailash Mansarovar Yatra were suspended due to the COVID pandemic, and as Kailash Mansarovar Yatra has started through the Sikkim route, through the Nathula Pass route, and now from today the border trade will officially start. It will take place during certain days in the week, and this border trade would remain open for actually 6 months. So this is a very positive move as far as the bilateral relationship between India and China is concerned. You can see here there's a complete backdrop road up to the China border. This just also goes to show center's keenness in trying to improve the infrastructure, and this is also a very strategic route for the movement of our armed forces. So therefore, perhaps it is a very historic day, and NDTV network is at ground zero reporting the starting or the restarting of the border trade between India and China from the Nathula Pass. With cameraman Nakul Rabha, Ratandeep Chaudhary for NDTV.
2: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े।
15: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekatato issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
6: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहाँ पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
12: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे, जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे, जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
15: एंड वेल, द प्राइम मिनिस्टर लेट लास्ट नाइट रिलीज्ड अनदर वीडियो मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, दिस टाइम रिस्पोंडिंग टू वायरल वीडियोस ऑफ यंग वुमेन अब्यूजिंग हिम ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। ही सेड दैट द एंटायर कंट्री वॉच्ड व्हाट हैपेंड। द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब द लैंग्वेज यूज्ड एज शॉकिंग, इंक्लूडिंग अब्यूसेस दैट वर डायरेक्टेड एट हिज मदर, बट इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग पनिशमेंट, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वॉन्ट्स टू फॉरगिव व्हाट ही कॉल्ड द मिसलेड यूथ ऑफ द कंट्री, एडिंग दैट लीगल एक्शन इज नॉट द सोल्यूशन, दैट सोसाइटी मस्ट हेल्प गाइड यंग पीपल इन टू द राइट पाथ।
17: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
18: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा, मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
19: अलांटि प्रधानमंत्री चाला मंदी आयन मीद माटलंटा उंटे, आयन्नी अनकूडनी माटलंटा उंटे ना गुंडे कदिलिंचेसिंदि। నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
15: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
20: Paili goshta manje vidyarthyanvarti hi vel jani handli त्या मोदीजीने आणि अमित शहाने विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून तसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहारे येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
15: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
21: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
22: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
23: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
24: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
25: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
21: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
26: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karun.
21: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
0: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं। जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे? एक communication तो key होता है हर चीज का।
1: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We connect them in good way if they talk to us like that only.
4: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
7: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उन उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप useless हो.
14: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to Member Parliaments using Gen Z lingo inside of the Parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
15: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
8: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
9: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
8: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते।
10: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
27: क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
28: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
2: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: टीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज टीओके।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
2: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
2: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
4: From the newsroom to the studio, to the thick of political action.
5: You're watching NDTV 24/7.
6: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
7: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
6: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
4: When stories have impact,
8: Padmatar Joshi, managing editor and primetime anchor.
4: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
9: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri Water Release Row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekadatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 of times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
10: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहाँ पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
11: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
9: एंड वेल, द प्राइम मिनिस्टर late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
12: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
13: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
14: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాట్లాడుతూ ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడేవారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేము ఉన్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మనం వారికి ఇవ్వాల్సింది.
9: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
15: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही, पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
9: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
16: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
17: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
18: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
19: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया।
20: हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है।
16: नॉट जस्ट द पार्लियामेंटेरियंस, द प्राइम मिनिस्टर्स इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी हैज ऑल्सो बिकम अ टॉकिंग पॉइंट, विद द प्राइम मिनिस्टर यूजिंग द प्लेटफॉर्म टू स्पीक विद जेन ज़ी, हुम ही रिफर्स टू एज हिज फ्रेंड्स।
12: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं।
16: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
21: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं। जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे? एक communication तो key होता है हर चीज का।
22: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We connect them in good way if they talk to us like that only.
23: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
24: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप useless हो.
25: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
9: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen and happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
26: Isi tahqiqat honi chahiye aur imandari se tahqiqat honi chahiye kaun maarne wale.
27: Isse pehle bhi police wale ki us pe attack hua hai.
26: Mujhe nahi pata ye kyon us waqt hota hai jab hum log statehood maang rahe hote.
28: Ye ek बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया. इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है. पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी. लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें.
29: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए. और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी. दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
0: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं।

0: जो है अंजाम दिया है वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
1: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
3: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Bansuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
4: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहाँ पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते। और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
5: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है, चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे, जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे, जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
3: एंड वेल द प्राइम मिनिस्टर लेट लास्ट नाइट रिलीज्ड अनदर वीडियो मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, दिस टाइम रिस्पॉन्डिंग टू वायरल वीडियोज ऑफ यंग वुमेन अब्यूजिंग हिम ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। ही सेड दैट द एंटायर कंट्री वॉच्ड व्हाट हैपेंड। द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब द लैंग्वेज यूज्ड एज शॉकिंग, इंक्लूडिंग अब्यूसेस दैट वर डायरेक्टेड एट हिज मदर, बट इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग पनिशमेंट प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वॉन्ट्स टू फॉरगिव व्हाट ही कॉल्ड द मिसलेड यूथ ऑफ द कंट्री, एडिंग दैट लीगल एक्शन इज नॉट द सोल्यूशन, दैट सोसाइटी मस्ट हेल्प गाइड यंग पीपल इन टू द राइट पाथ।
6: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
7: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा, मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
8: अलांटी प्रधानमंत्री चाला मंदी आयन मीद माटलंटा उंटे, आयन्नी अनकूडनी माटलंटा उंटे ना गुंडे कदिलिंचेसिंदी। కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం. ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు

0: మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు వీటన్నిటిని తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
1: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
2: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजीने आणि अमित शहाने विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताठीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही, पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
1: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
3: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
4: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
5: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
6: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
7: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
3: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
8: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
3: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
9: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं. जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीज़ें और हम कैसे बता पाएंगे. एक communication तो key होता है हर चीज़ का.
10: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
11: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
12: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप useless हो.
1: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
13: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
14: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले. इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है. मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते.
15: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया. इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है. पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी. लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें.
16: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं. हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए. और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी. दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
17: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है. हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है. देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी. जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे.
18: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है. आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए. पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं,

आतंकी हमले के तुरंत बाद टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है, और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Avasthi. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri Water Release Row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekadatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 of times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
1: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहाँ पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
2: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
0: एंड वेल, द प्राइम मिनिस्टर late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
3: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
4: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
5: अलांटि प्रधानमंत्री ने చాలా మంది ఆయన మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాట్లాడుతూ ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేము ఉన్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
0: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
6: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय. काय पुढे देश चालणार कसं?
0: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
7: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
8: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
9: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
10: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
11: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
7: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
3: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karun.
7: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
12: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं. जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे. एक communication तो key होता है हर चीज का.
13: Yeah, in our own way, like Gen Z slang should be better. We connect them in good way if they talk to us like that only.
14: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
15: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or शुड बी लाइक के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप यूजलेस हो.
16: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear, that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
0: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen and happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
17: Isi tahqiqat honi chahiye aur imandari se tahqiqat honi chahiye kaun maarne wale.
18: Isse pehle bhi police wale ki us pe attack hua hai.
17: Mujhe nahi pata ye kyon us waqt hota hai jab hum log statehood maang rahe hote.
19: Ye ek बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया. इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है. पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी. लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें.
20: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए. और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी. दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
21: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है. हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है. देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी. जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए.
22: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है. आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए. पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं. आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है. चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला

0: and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
1: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
2: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
3: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
2: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते।
4: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
5: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
6: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे।
7: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है
1: वेट सिर्फ आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
1: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
2: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं।
0: And well, the Prime Minister late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
3: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भलीभांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
4: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
5: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాటలంటా ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాటలంటా ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేని? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
0: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
6: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजी आणि अमित शहांनी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
0: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
7: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
8: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
9: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
10: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
11: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
7: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
3: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
7: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
12: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं. जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे. एक communication तो key होता है हर चीज का.
13: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
14: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
15: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or शुड बी लाइक के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप यूजलेस हो.
16: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things. From the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear, that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
0: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
17: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले.
18: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है.
17: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट रोड मांग रहे होते.
19: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया. इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है. पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी. लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें.
20: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं. हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए. और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी. दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
21: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है. हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है. देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी. जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए.
22: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है. आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए. पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं. आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है. चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है. और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
2: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
1: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते।
3: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
4: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
5: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
6: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am
2: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
3: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
4: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
2: And well, the Prime Minister late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
5: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
6: अलांटी प्रधानमंत्री चाला मंदी आयन मीद माटलंटा उंटे, आयन्नि अनकूडनि माटलंटा उंटे ना गुंडे कदिलिंचेसिंदि, ना कन्नीळ्ळु वच्चिनायि, बाध वच्चिंदि। దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదే, కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మనం వారికి ఇవ్వాల్సింది.
2: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
7: Pahili goshta manje vidyarthyanvarti hi vel jani handli kya Modi ji ne Amit Shah ni vidyarthyanchi ani vidyarthyancha kutumbyanchi maafi magitli pahije. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहारे येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले

0: आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसा.
1: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
2: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
3: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
4: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
5: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
6: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
2: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
7: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
2: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
8: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं. जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे. एक communication तो key होता है हर चीज का.
9: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
10: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
11: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or. शुड बी लाइक के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप यूजलेस हो.
12: But over the past couple of days we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear, that to win the elections the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
1: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
13: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले.
14: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
13: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते
14: हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
15: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
16: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
17: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: covered with a throw and a pin of her own, and forced the bout into golden score. Then came the moment that will live in Indian judo history. Just over 4 minutes into extra time, Asmita trapped Kwok near the edge of the mat, secured the decisive pin, and became the first Indian judoka to stand on top of the Commonwealth Games podium. It was an emotional victory. Asmita dedicated the medal to her late father, who passed away last December, saying she had almost lost hope before rebuilding her career and returning to the mat.
1: प्रेयुदर इतना सपना बड़ा नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएंगे करके, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में, तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ।
0: A short while later, 23-year-old Harsh Singh delivered another milestone. Facing Australia's Joshua Katz in the men's 60 kg final, Harsh stayed composed under relentless early pressure before producing the decisive throw with less than a minute remaining. Harsh became India's second Commonwealth Games judo gold medalist.
2: मैं बहुत खुश हूँ, आज अपनी फैमिली के लिए मैंने गोल्ड जीता है और आज सारे साथ में थे, हमारे कोचेज एंड पूरे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबके कॉल मैसेज आ रखे थे कि अच्छे से खेलना और गोल्ड लेकर आना इंडिया के लिए। मैं दिल्ली से आता हूँ और क्या कहते हैं, मैं अपनी मम्मी को समर्पित करना चाहूँगा ये मेडल।
0: The silver lining to the evening's effort came with another medal from Yamini Maurya. She lost gold but won silver in 57 kg category to end India's remarkable judo campaign on the penultimate day of competitions at the 2026 Commonwealth Games. Rika Roy for NDTV.
3: With that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.